उड़दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हम दो धुरंधर पहुंच चुके हैं आपके मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किससे खबरें कहानियां शेयर करने के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए।
1: मैंने तो बांध लिया, देखो
0: भाई बांध थोड़ी और टाइट करो।
1: ओके
0: मैं भी अपनी टाइट कर रहा हूँ बट वो पेट बीच में आ रहा है तो नहीं हो पा रहा, थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। मगर यहाँ पे भाई बातें बहुत सारी करनी है तो अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए 3311063 पर। भेजिए अपने गुड मॉर्निंग कोड्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, बताइए हमें क्या हाल है, क्या चल रहा है और आज का क्या इरादा है।
1: बिल्कुल जी, देखिए यार आपके इरादे से हमारा इरादा जो है
0: जी
1: वो मजबूत हो जाता है। यस, आपकी मोटिवेशन से हमारा दिन कैसा जाएगा ये डिसाइड होता है। आप जो है हमारे दिन का मूड बोर्ड जो है वो सेट करते हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो प्लीज
0: बिल्कुल।
1: जल्दी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो भेज दीजिए ताकि मेरी जो थोड़ी बहुत नींद बाकी है, जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है,
0: छींटा मारो उनके मुंह पे पानी के,
1: मोटिवेशन के
0: छींटे लगाओ, जरा भेजिए कोट अपने।
1: कभी कभी सच में आप मेरे पापा जैसी बातें करने लग जाते हो यार।
0: क्या बात कर रहे हो, वेल आई हैव अ कमबैक बट नहीं तो मैं यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते
1: मैंने सुन लिया
0: तो चलिए गाना नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, जरा झलक दिखा देते हैं आपको कि कौन से गाने जो है आने वाले हैं आपके रेडियो सेट्स में। तो शुरू करें
1: जी, बिल्कुल।
2: मेरे सोने सोने वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना।
0: और उसके साथ साथ एक और प्यारा गाना आपके रेडियो सेट पे आने वाला है। आज क्यूटनेस का और नाचनेस का जो है थोड़ा एक मिक्स है, नाचनेस है ना, है ना, या सुनील पाल का फैन हो ना मैं जिन्हें पता है
1: उन्हें पता है।
0: अभी फिलहाल भाई अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में भूत बंगला मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
0: तो भाई जैसे कि मैंने बोला मैसेजेस करना मत भूलिएगा 3311063 पर, अपने मैसेजेस को तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी सेंड कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
0: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
4: Hey, this is Ileana De Cruz.
5: This is me, Hrithik Roshan.
6: Hi, I'm Alia
7: Bhatt. Hi, I'm Vivek Anand Oberoi, and you're listening to Radio Olive. Jio Bindas.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: कबीर सिंह मूवी का गाना हमने सुना परंपरा ठाकुर और सचेत की आवाज में, मतलब इतना प्यारा गाना, काफी कॉन्ट्ररी लगता है मुझे कभी क्योंकि कबीर सिंह मूवी काफी प्यारी नहीं बोल सकते हम, काफी वायलेंट है,
1: काफी वायलेंट, ज्यादा वायलेंट है।
0: एनिमल से कंपेयर करेंगे तो बच्चा ही लगता
1: है। एक मिनट, बुरे से कंपेयर क्यों करना है?
0: नहीं, हमें बताना होता ना कि भाई इतना भी देखो,
1: इतना भी नहीं है देखो,
0: वो रिलेटिविटी होती है ना, थियोरी ऑफ ये वो, देखो आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अलग है मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अलग होती है।
1: राइट,
0: ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि भाई सबसे बुरा कौन, उससे कम बुरा कौन,
1: कम बुरा कौन? देखो मैं बुरा हूँ बट वो देखो वो ज्यादा बुरा है,
0: ज्यादा बुरा है, ठीक है, उसके हिसाब से तो हम ठीक है ना, करके ये कंपैरिजन चलता ही रहता है। तो हाँ, बहुत ही प्यारा गाना जो हमने सुना, और यहाँ पे हमारे पास भी आए हैं भाई थोड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस, तो चलिए पढ़ते हैं। मैसेज आया है एक बहुत ही प्यारा हमें निशांत कुमार भाई का, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जुल्फी भाई ने लिखा है वेक अप एंड फेस योर स्ट्रगल्स हेड ऑन, दे आर जस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू योर ग्रेटनेस, गुड मॉर्निंग करिए। वाह जी वाह,
1: वेकिंग अप इज द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर मी।
0: यस, फेस स्ट्रगल तो दूसरी अलग बात है, वो अलग बात है, बट कोई बात नहीं, बट बहुत ही बढ़िया जुजारू मोटिवेशन वाला कोट दिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ ऋषिन का मैसेज आया है, ऋषिन ने मैसेज किया है और बोला है कि वेक अप विद अ स्माइल एंड स्टार्ट योर डे गुड मॉर्निंग जियो बिंदास करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, काफी क्यूट और मुस्कुराहट वाला जो है कोट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाजनीन जी का भी मैसेज आया है, नाजनीन जी ने भी हमें मैसेज किया है, बोला है कि डियर गॉड आई वोक अप, आई एम हेल्थी, आई एम अलाइव, थैंक यू, I apologize for all my complaining. I'm truly grateful for all you have done. Good morning. Gratitude के साथ
1: important है, देखो
0: आज का दिन जो है शुरू किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन मैं विश करता हूँ। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है, लिखा है कि एक्सेलेंस इज नॉट अ स्किल, इट इज एन एटीट्यूड। वाओ, ये तो सही बात कही है वैसे, एक्सेलेंस एक एटीट्यूड होता है, बाद में उससे रिलेटेड स्किल्स जो है डेवलप हो जाते हैं, मगर हमारे सोच में एक्सेलेंस का एक वो होना चाहिए, तो धीरे धीरे हम भी बढ़िया हो जाएंगे। और राजन भाई का मैसेज आया है, लिखा है कि हाय गुड मॉर्निंग जी बोथ ऑफ यू, योर वॉइस इज अमेजिंग, वी लव्ड इट, जियो बिंदास राजन फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। दिल खुश कर दिया आपने एकदम, मुझे लगता है डैशबोर्ड में चाय की प्याली रखी है और बहुत ही बढ़िया एक फोटो जो है उन्होंने भेजा है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और अबरार भाई का भी एक मैसेज आया है, और अबरार भाई ने गुड मॉर्निंग भेजा है हमें, और एक ऑडियो भी भेजा अबरार भाई, ये ऑडियो डाउनलोड हो ही रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, मगर मैं ऑडियो सुनूंगा और आपको रिस्पॉन्ड करूंगा चैट में, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और जैसे ही हम गानों के उस पार आएंगे वापस थोड़ी देर में, आपके साथ एक सवाल पूछेंगे,
1: आप क्या पांचवी
0: छठी सातवीं आठवीं नवी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से आप कितने तेज?
1: यस गाइस,
0: यस, देखते हैं कि आज किसका पलड़ा भारी है।
1: आज मुझे भी क्वेश्चन पेपर पता नहीं चल रहा है। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि यार ये तो सातवीं रहती है, इसको बहुत पता होगा,
0: सीबीएसई से भी बढ़कर है इस मामले में।
1: मैं तो बस ये इस बात का शुक्र मनाती हूँ कि जो है सुदेव ने मेरा पेपर बोर्ड का सेट नहीं किया था, वरना मैं पक्का फेल हो जाती।
0: मैंने भी खुद का नहीं किया था, वरना मैं भी पक्का चांसेस तो है उसके।
1: मुझे लगता है ये अपना ही ना 10th या 12th का पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के लेकर आए हैं,
0: नहीं,
1: उसी में से रोज एक एक क्वेश्चन लेके आते हैं।
0: यार उससे याद आया, मेरे टाइम पे तो 10th में बोर्ड भी नहीं था।
1: ओ माय गॉड,
0: हाँ
1: अब मैं बताऊंगी तो फिर मुझे बोलेंगे अरे ये तो कल के बच्चे, मेरे टाइम पे 8th बोर्ड था।
0: 8th का बोर्ड था,
1: 8th बोर्ड, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, एंड 12th बोर्ड जब था तो कोविड आ गया था।
0: अच्छा, तो उसे बोर्ड मत बोलो आप।
1: नहीं, बट मेरा सिर्फ एक ही पेपर कोविड में फंसा था,
0: okay.
1: बाकी सारे पेपर मैंने दे दिए थे, मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे,
0: okay.
1: so इस पे बात करेंगे,
0: करेंगे, करेंगे,
1: लेकिन
0: बिल्कुल करेंगे।
1: लेकिन क्वेश्चन में पता करके आती हूँ जरा,
0: क्वेश्चन जरा देखते हैं पता कर पाती है नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर।

0: जावेद अली की आवाज में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा मूवी का गाना। यार कशिश मूवी देखी है आपने?
1: वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा
0: देखिए आपने? पहली बार देखी है? दोबारा छोड़ो,
1: पहली देखी है पहली नहीं देखी है। ओके अक्षय कुमार दोबारा, राइट? हाँ, दोबारा
0: और इमरान खान,
1: या
0: ये दोनों थे।
1: दोबारा देखी है,
0: देखी, कैसी लगी?
1: पहली वाली नहीं देखी, अच्छी लगी।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। बस ऐसे ही जीके के लिए पूछ रहा था।
1: माय गॉड, अच्छा अब तक जीके में ये वाले क्वेश्चन है तब तक बढ़िया है।
0: अच्छा,
1: जैसे ही आप ज्योग्राफी साइंस की तरफ जाते हैं तब मुझे ऐसे धक धक धक होने लग जाता है।
0: तो धक धक होना शुरू करवा दीजिए, क्योंकि सवाल ज्योग्राफी का है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिलसिला ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में आज ये ऐसा सवाल है जो आपके दिल को दहका देगा।
1: अरे यार,
0: पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी।
1: ऐसा क्या पूछने वाले हो?
0: ये आपने उल जलूल सुना होगा, मगर ये आग बबूला सा सवाल
1: है।
0: अरे बिल्कुल डेलुलू सवाल नहीं बोल सकते इसे, बट हाँ सवाल है, अर्थ का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? द बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ।
1: पता है मुझे ना, ये मुझे याद था पर मैं भूल गई।
0: कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे, आपको याद है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो कोई नहीं, गूगल कर लीजिए, देखते
1: थोड़ी सी चीटिंग चलती है।
0: तो ओपन बुक बना ही देते हैं। तो बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके, तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी आप जो है मैसेज कर दीजिए और बताइए मुझे सवाल का जवाब क्या है। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जैसे ही ये सवाल मैंने पूछा, कशिश के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आया उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस गाने से। किस तरफ है आसमान, किस
1: तरफ जमीन, खबर नहीं। बिल्कुल सही गाना है, ज्योग्राफी के लिए करेक्ट गाना है,
0: गाना
1: कि
0: है।
1: मुझे नहीं पता,
0: नहीं पता।
1: अगर आप मुझे बोलो कि कहाँ आसमान है, कहाँ जमीन है, कहाँ ईस्ट है, कहाँ नॉर्थ है, मुझे नहीं पता।
0: अच्छा, अच्छा
1: बिल्कुल अच्छा। नहीं पता मुझे, बस ये पता है कि मैच गाला हो रहा है और मैं अभी उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज हूँ। सो अगर हमें सुदेव थोड़ा सा मौका दे फैशन के बारे में बात करने के लिए, तो थोड़ी देर में हम इसमें भी बात करेंगे। सो आप स्टे ट्यून्ड रहिए और ये अमेजिंग वाले गाने।
0: जी बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड, रेडियो 106.3 FM।
1: जी ओपन दास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन. Or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: किस्मत टू से रोमी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गाना। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पे सवाल पूछा था हमने कि अर्थ का यानी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। हमारे पास थोड़े जवाब आए हैं। हमें जो है सरिता जी ने मैसेज भेजा है। सरिता जी ने मैसेज किया है और बोला है कि गुड मॉर्निंग यू बोथ, कैसे हैं आप दोनों? हम तो बिल्कुल बढ़िया जी। मोना लाओ आंसर है, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और उसके साथ साथ मुझे इन्होंने, मैंने पूछा उनसे कि आपके हाल क्या हैं आप बताएं, तो बोले एकदम औसम, बिल्कुल औसम तरीके से जवाब भी भेजा उन्होंने। जुबैर अहमद भाई का मैसेज भी आया है और जुबैर भाई ने लिखा है गुड मॉर्निंग, द आंसर इज मोना लाओ लोआ या मोना लोआ। और उसके साथ साथ मुझे सृष्टि ने एक ऑडियो भी भेजा है, वो ऑडियो सुन लेते हैं। तो चलिए प्ले करते हैं ऑडियो।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज सृष्टि एंड द आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन इज मोना लोआवा।
0: मोना लोआवा, ओके। सो देखिए अब मैं आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बता सकता क्योंकि मैंने वैसे पढ़ा था, बट आई गेस सृष्टि ने जो बोला है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। थैंक यू सो मच सृष्टि के मैसेज भेजने के लिए। एंड यहाँ पे एक और जवाब जो हमारे पास आया है, अनिल भाई के अकाउंट से मैसेज आया है। आर्यन ने मैसेज किया है, 10th ग्रेड से है वो। उन्होंने बोला कि द आंसर इज येलो स्टोन वॉल्केनो। अब यहाँ पे देखिए ट्विस्ट आ चुका है, दो अलग आंसर आ चुके हैं। मेजोरिटी ने बोला है मोना लोआवा और उसके साथ साथ एक इंसान ने बोला है येलो स्टोन वॉल्केनो। क्या लगता है कौन सा सही होगा?
1: मोना लोआवा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लोनावला मुझे ना भी बोल दोगे। तो देखिए अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। मोना लोआवा जो है वो लार्जेस्ट एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है ऑन अर्थ बाय वॉल्यूम एंड फिजिकल साइज। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंट लावा फ्लोज जो है, फ्लूइड लावा फ्लोज होते हैं। येलोस्टोन जो है कॉन्टिनेंटल सुपर वॉल्केनो है। वो अपने मैसिव और इनफ्रीक्वेंट और हाईली एक्सप्लोसिव इरप्शंस के लिए जाना जाता है। दोनों हॉटस्पॉट वॉल्केनोज हैं, मगर येलोस्टोन जो है एक डिप्रेशन में रहता है,
1: मतलब वो कभी कभी एक्टिव होता है,
0: कभी कभी एक्टिव होता है। और वो सरफेस जैसे यूजुअली हम जो देखते हैं कि वॉल्केनोज जो है वो माउंटेन्स में होते हैं, सी लेवल के ऊपर होते हैं, बट येलोस्टोन जो है 30-45 miles के एक रेडियस में, एक कैल्डेरा या फिर डिप्रेशन में है रादर देन अ सिंगल माउंटेन। तो यूजुअली जो है यही कंसिडर किया जाता है कि मोना लोआवा जो है वो एक सिग्निफिकेंटली लार्जर एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है विच इज राइजिंग अबव 13,000 feet अबव सी लेवल। ठीक है, 13,000 feet तक की ऊंचाई तक ये जाता है। तो देखिए इतना एक डिफरेंस जो है दोनों के साइज में है। तो जवाब टेक्निकली कौन सा सही है पूछे तो इट इज मोना लोआवा, मगर एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भी अटेम्प्ट जो किया है बिल्कुल सही किया। तो
1: आप नहीं हाँ, आंसर पर सही भी नहीं,
0: सही भी नहीं। तो सबके लिए तालियां। और इसी खुशी में काम करते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: यस।
0: और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: भाई बहुत ही प्यारा गाना है ये और मूवी भी प्यारी है.
1: Yes.
0: कुछ कुछ मोमेंट में हम इतना मतलब उस मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आंसू आ जाते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं, कभी मतलब फूट फूट के हंस देते हैं. तो एक रोलर कोस्टर राइड था इमोशन का मूवी जो है. आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश.
0: तो भाई स्टेशन क्लॉक में अभी 7:06 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए देखते हैं मौसम का हाल क्या है. अभी का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस. आज का हाईएस्ट होगा 41 डिग्री सेल्सियस. आज का लोवेस्ट होगा 28 डिग्री सेल्सियस. अरे अरे अरे अरे अरे अरे और हवाएं बह रही है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से. और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा कशिश का उड़ा के तो नहीं ले जाएगी.
1: किसी हवा में इतना दम नहीं कि वो हवाएं उड़ा के ले जाए.
0: देखो आप अपनी बात करो. बट या यहाँ पे जो है हम मौसम का हाल देख रहे थे, जैसे कि अभी हमने बताया 32 डिग्री सेल्सियस है, काफी सनी डे है जो है बताया गया है. आप बताइए भाई नजारे कैसे हैं बाहर के, फोटोज क्लिक कीजिए, भेजिए हमें 3311063 पर. और यहाँ पे जो है ऑलरेडी इदरीस भाई का मैसेज आ चुका है, उन्होंने 12 मिनट पहले ही फोटो भेज दिया, बोला कि ये लोग मांगेंगे, अब भेज ही देता हूँ मैं पहली करके. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. काफी बढ़िया एकदम बिंदास फोटोज जो हैं आपने यहाँ भेजे हैं. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. और ऐसे ही सामी भाई का भी मैसेज आया है. और भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपके आसपास के नजारे कैसे हैं, सूरज बाबू कैसे चमक रहे हैं, जरा फोटो खींच के भेजिए हमें.
1: बिल्कुल जी, पहले जो है सबसे पहले फोटो खींचिए हमें भेज दीजिए. और क्या होता है ना कि हम अक्सर ये लड़ाई करते हैं कि यार मेरे फोन का कैमरा वैसे अच्छा है, धूप में बहुत अच्छी फोटो लेता है. सो बस ये परफेक्ट लाइटिंग है, परफेक्ट धूप है, अपने फोन का कमाल दिखाइए, अपने फोटोग्राफी स्किल्स जो है वैसे शो ऑफ कीजिए, एक वॉलपेपर वर्दी फोटो.
0: यस, सामी भाई का भी मैसेज आया, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई एंड कशिश, कैसे हैं आप दोनों. वालेकुम अस्सलाम, सब बढ़िया है, एकदम खैरियत में चल रहा है. और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्यारा गाना जो है वेट कर रहा है, अरिजीत सिंह की आवाज में धुरंधर रिवेंज का एक बहुत ही प्यारा गाना. मतलब क्या बताऊं मैं, गाने से मोहब्बत है मुझे.
1: यस.
0: इतना प्यारा गाना. और कहीं ना कहीं जब ये गाना मैं सुनता हूँ तो ना, अभी देखिए हम सब जो हैं सालों से अपने घर से दूर हैं.
1: हाँ.
0: और जब हम वापस जाते हैं कहीं ना कहीं शायद यही इमोशन हमारे भी मन में चल रहा है. तो चलिए इस गाने को सुनते हैं एक साथ बैठकर और कहते हैं
1: जियो बिंदास.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूं आपकी कशिश।
0: अरे अरे अरे अरे, और यहां पे जो है हम दो धुरंधर पहुंच चुके हैं।
1: yes.
0: स्टेशन क्लॉक में 7:19 हो रहे हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। हमें एक मैसेज आया है। मैसेज हमें भेजा है, एक मिनट रुक जाओ, उनका फोटो। यस, मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद मुशीर भाई ने, और बहुत ही प्यारा एक फोटो भेजा है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा फोटो आपने भेजा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। इदरीस भाई ने भी एक फोटो भेजा है, एकदम नया, कड़कती हुई धूप,
1: चमकती हुई
0: कड़क बिल्कुल कड़क धूप। क्योंकि मैं कल सुबह इसी टाइम पे बाहर निकला था, इसी टाइम में नहीं, थोड़ी देर बाद, 7 बजे नहीं, 10-11 बजे के आसपास मैं बाहर निकला था भाई। जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने सोचा कि यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे,
1: अंदर ही रहना चाहिए। अभी पता है हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडियो के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ठंड लग रही है। और जैसे ही बाहर जाते हैं
0: तो गर्मी लगती
1: है। कि यार ये क्या हो गया।
0: तो एक इस कश्मकश में हमारी जिंदगी गुजर रही है कि हम गर्मी में भी हैं मगर सर्दी भी लग रही है।
1: मतलब
0: करे तो करे क्या, बोले तो
1: बॉडी को कंफ्यूजन हो गया। इतनी कंफ्यूजन ना मुझे ना 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करते हुए नहीं हुआ था, जितना कंफ्यूजन मुझे इस वक्त हो रहा है कि गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है।
0: आपने कॉमर्स लिया था ना
1: क्या?
0: देखो पता था मुझे, मैं समझ जाता हूँ इसी।
1: हाँ, इंटेलिजेंस से।
0: नहीं नहीं नहीं, बताया था मुझे, याद रहा बस। आपने बताया था मुझे, याद रहा बस। देखिए इसे कहते हैं कि जो काम की चीजें मुझे याद नहीं रहती।
1: Exactly. मेरा नाम नहीं याद रहेगा।
0: देखो नाम याद है कशिश, इतना खूबसूरत नाम है, कैसे भूल सकता है इंसान। कैसे भूल सकता है कशिश का नाम, है ना?
1: ठीक है।
0: आप ऐसे मत बोलो, नाम मैं भूलता नहीं हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी।
1: हाँ, किसी दिन मुझे अगर ये कमलेश बोल दे तो कोई दोहराई नहीं होगी। देखिए
0: कमलेश से याद आया, विमलेश भाई का बहुत दिनों से मैसेज नहीं आया। विमलेश भाई हमारे कालीम भैया की आवाज निकालते हैं।
1: राइट, आपने मेरी एक बार तारीफ करी थी, उसके बाद से पता नहीं आप गायब है।
0: हाँ, वही उन्होंने सोचा कि अब हो गया, अब नहीं करना मुझे, मेरा हो चुका है भाई।
1: आप उस दिन आए नहीं थे, और उस दिन उन्होंने ना मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिमिक करते हुए पूरी 1.5 मिनट की तारीफ करी थी उन्होंने मेरी।
0: आपको मिमिक करते हुए?
1: नहीं,
0: अच्छा, कालीन भैया को। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। मुझे ना आपको इतना मतलब लेवल पे आ गए, ऊंचे लेवल पे आ गए वो, कि कशिश को उन्होंने मिमिक कर दिया। वाह यार, तो अभी चलिए फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर में जब हम गानों के उस पार वापस आएंगे तो करेंगे फिटनेस की बात। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 2030 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else starting from May 4. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari. World-class shopping experience. Doha, Qatar.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: क्योंकि मूवी का गाना है ये.
1: अच्छा मुझे लगा क्योंकि कुछ बोल रहे हो.
0: क्योंकि क्यों नहीं. कुणाल गांजा वाला ने गाना गाया. भाई मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी कशिश भी मेरे सामने है, कि मैं सही में बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ उनका नाम पढ़ते वक्त. ठीक है, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है. ठीक है, काफी वियर्ड नाम है. और उसके साथ साथ मुझे हमेशा जब भी मैं इनका कोई भी गाना सुनता हूँ और कोई भी नाम जब भी यहाँ पे पढ़ता हूँ, मुझे एक एक एक इंसिडेंट याद आता है.
1: मुझे भी वही इंसिडेंट याद आता है जो
0: जब वो स्टेज शो में कि मेरा गला खराब है,
1: भीगे
0: होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा. और मैं सोचा कि
1: पूरा गा दो यार.
0: पूरा गाना है, पूरा तो आता नहीं
1: मतलब इतना ही पार्ट.

0: بس تنيت انا
1: فيك
0: نايس انا كافي انا आपको कभी भी कुणाल भाई गाना नहीं गाएंगे सुनके कि इतनी बेइज्जती तो मैं नहीं सह सकता करके
1: नहीं बस
0: है ठीक है थोड़ा बट यहाँ पे हम काम की बात करते हैं जिसके लिए हम आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है देखिए फिटनेस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए लेकर आए तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे रेगुलर स्ट्रेचिंग के बारे में रेगुलर स्ट्रेचिंग से ब्लड सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव हो सकता है उसके बारे में जरा बात करते हैं जब आप लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते हो डेस्क जॉब फोन यूज इनसे क्या होता है मसल्स हमारे टाइट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है इससे स्टिफनेस फटीग और कभी कभी नमनेस भी फील होती है जेंटल स्ट्रेचिंग मसल्स को लेंथन करता है और उनके अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ओपन भी कर देता है अब इससे फायदे क्या होते हैं एक फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है मसल तक बेटर तरीके से पहुंचेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि लैक्टिक एसिड ये सब एफिशिएंटली बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और बॉडी जो है ओवरऑल ज्यादा एक्टिव फील करती है और रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि रेगुलर स्ट्रेचिंग जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है इंजरी का रिस्क कम करती है एस्पेशली अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहते हो तो एक दो घंटे में दो तीन मिनट लाइट स्ट्रेचिंग ब्लड फ्लो को रीसेट कर देता है
1: सो इन शॉर्ट स्ट्रेचिंग से जो है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती है बेटर ब्लड फ्लो जो है वो भी मेंटेन रहता है और एनर्जी के लिए भी ना ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: बहुत,
1: है
0: बहुत
1: और
0: जरूरी
1: ये
0: है।
1: जब तक आपको ये सीधे बता रहे थे तब तक मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग तो
0: स्ट्रेचिंग देखो अभी स्ट्रेचिंग की है इन्होंने ये बात इतने देर से हम बैठे डेढ़ घंटे से बैठे अब जाके कशिश ने स्ट्रेचिंग किया इसीलिए मैंने टॉपिक लिया
1: एक रिमाइंडर की आपको जरूरत होती है बस वो रिमाइंडर बन के हम आपकी लाइफ में आ चुके हैं
0: हम आपके हैं कौन
1: रिमाइंडर्स
0: अलार्म बोल लो अलार्म बोल सकते हो रिमाइंडर बोल सकते हो प्यार से धुरंधर भी बोल सकते हो
1: देखिए आपकी बॉडी जो है आपको अलार्म करे कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा उससे पहले जो है आप जाग जाइए चैन से सोना है तो जाग जाइए
0: क्या बात कर दी यहाँ पे चैन से सोना है तो जाग जाइए इतनी गहरी बात इतनी छोटी उम्र में एक इंसान कैसे कर सकता है ये अभी भी कुदरत का एक अजूबा है चलिए इस अजूबे के मुंह पे थोड़ा पानी की छींटे लगा देते हैं नींद में लगते हैं अभी भी
1: चाय के छींटे मारेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा
0: तो चाय की छींटे लगवा कर हम जरा आते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे आप इश्किया मूवी का गाना सुनिए मीका पाजी और सुखविंदर सिंह ने मिलकर गाया है और कहते हैं
1: जियो बिंदास

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे कुछ इम्पोर्टेंट बात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है कन्वे की है, अस्थमा के बर्डन को टैकल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उन सबके बारे में एक छोटा सा डिटेल जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कतर ने वर्ल्ड अस्थमा डे पर फोकस किया और बोला कि सबको इनहेलर ट्रीटमेंट्स इजीली मिलने चाहिए और ये अभी की एक अर्जेंट नीड है। और गवर्नमेंट अवेयरनेस से आगे बढ़कर बिहेवियर चेंज पर भी काम जो है हो रहा है, और जैसे अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करना। हेल्थ ऑफिशियल्स ने बोला कि लोग डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, ट्रिगर्स अवॉइड करें और मेडिसिन रेगुलरली लें। स्कूल्स में भी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, अस्थमा फ्रेंडली स्कूल प्रोग्राम, जिससे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टाफ को अवेयरनेस मिले। और ओवरऑल गोल है अस्थमा जैसे क्रॉनिक डिजीज का इम्पैक्ट कम करना और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना अंडर द नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2024-2030। तो यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कशिश वहां पे चाय पी रही है, मैं दौड़ के जाके उसके साथ बैठकर पानी भी कराता हूँ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: India's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के वी लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Hi there friends, this is DJ Sukeet. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm a number one. Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds, Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: कोई जाने ना मूवी का गाना हमने सुना, आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए भाई बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, लीग के बारे में, कल के मैच के बारे में। तो कशिशवा मैडम बताइए, कल क्या जादू हुआ पिच में?
1: यार पिच में जादू तो ऐसे हुआ कि जो हिटमैन है, जो हमारे अजीज दोस्त है जिन्हें हमें बहुत विश किया था, रोहित शर्मा जी की जो है हैमस्ट्रिंग एक इंजरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने वापसी की। और क्या वापसी की है भाई, मतलब मुंबई और लखनऊ के बीच में कल मैच था एंड रोहित की वापसी हुई 44 बॉल्स में 84 रन जो है वो उन्होंने बनाए एंड सात मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन ऑब्वियसली थाला फॉर रीजन,
0: थाला फॉर रीजन ऑब्वियसली,
1: कि 7 सिक्सेस जो है उन्होंने लगाए।
0: अरे इसलिए तो जीती है भाई,
1: मुझे पता था कि ये होने वाला है, बस इसीलिए ना मैं इससे मतलब मैं बता दूं पर नहीं बताऊं ऐसा वाला कुछ चाह रही थी मैं। बट लखनऊ और मुंबई के बीच में मैच था, मुंबई जो है वो जीत गई, 229 रन बना लिए थे 18.4 ओवर्स में 4 विकेट खोकर।
0: और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए 6 विकेट से मुंबई जो है मैच जीती, 8 बॉल बचे थे, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 ताला फॉर रीजन,
1: 6-7 6-7।
0: अभी टेबल की अगर हम बात करें तो थोड़ा तो चेंज आ ही गया होगा, थोड़ा सा ऊपर तो आ ही गई होगी और टेबल के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, उसके साथ साथ आज के मैच के बारे में भी हम बात करेंगे कि आज कौन कौन भिड़ने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, हमारे प्रेडिक्शंस क्या क्या हैं, आपके प्रेडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, सब जानेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास। कूल
2: सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: हम तो मूवी का गाना हमने सुना, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 8:27 हो रहे हैं और चलिए बात करते हैं क्या हो गया
1: सुदेव। आज खुश तो बहुत होगे तुम।
0: खुश तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों आज बताओ क्या हो गया। खाना वाना आ रहा है, बिरयानी आ रही है।
1: देखिए वो तो आ ही जाएगा।
0: अच्छा?
1: अगर आपकी टीम आज जीत जाएगी तो आप मंगा दीजिएगा, हम खा लेंगे।
0: मंगाएंगे, क्यों नहीं मंगाएंगे। और खुश तो होना ही है हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली आज मैच है चेन्नई का
1: और चेन्नई और दिल्ली के बीच में आज मैच जो है वो खेला जाना है दिल्ली के होम ग्राउंड पे।
0: अच्छा, अरुण जेटली स्टेडियम में।
1: अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली में जो है ये मैच खेला जाना है
0: जी।
1: अब मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा कि यार आप बताओ कि
0: क्या
1: लग रहा है कि कौन जीतेगा। चैट जीपीटी ने भी कह दिया कि दिस इज टफ वन।
0: टफ वन क्यों?
1: क्योंकि दोनों ही जो टीम्स हैं दोनों वो अपना बेयर मिनिमम खेल रहे हैं।
0: जी बात तो सही है
1: ना। और माही जी जो है वो आ नहीं रहे हैं।
0: माही जी क्यों नहीं आ रहे हैं यार
1: पता है मेरे सोशल मीडिया पे अब कैसी वीडियो आने लग गई है कि
0: आज भी वही
1: ही विल नॉट कम। इसे जो है हिंदी में क्या बोलेंगे तो वो वीडियो धीरे से शुरू होती है वो नहीं आएगा
0: वो
1: और
0: नहीं
1: फिर
0: आएगा।
1: वो नहीं आएगा वो नहीं आएगा और ऐसे करके जो है माही भाई की फोटो जो है वो धीरे धीरे करके स्क्रीन पे आती है एंड दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। यार देखो मैं ना उतनी बड़ी चेन्नई टीम के फैन नहीं हूँ लेकिन जिसको आप मतलब
0: बचपन से
1: देख रहे हो यार और आप जिसको देखना चाहते हो खेलते हुए और वो प्लेयर जो है उसके आने का बस इंतजार कर पा रहे हो लेकिन आ नहीं रहा है वो तो ये थोड़ा सा
0: जी मैं समझ सकता हूँ। मुझे जब भी ये सिचुएशन पता है मुझे क्या याद दिलाता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मम्मी के ऑफिस में ऐसे एग्जीबिशंस के लिए लोग आते थे ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदा एक हैंडमेड गिटार बेचने वाला एक बंदा जो खुद बनाता है ठीक है, फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं है वो खुद बनाता है। तो मम्मी से मैं बहुत टाइम से बोलता था कि मुझे गिटार दिला दो गिटार दिला दो। तो मम्मी एक दिन आके मुझसे बोली कि ये आया था ठीक है, मैं सोच रही थी कि लेने का बट उस टाइम पे वो पैक करके जा रहा था, अब वो आएगा तो मैं
1: नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले लेंगे।
0: अब मैं उस दिन से लेके आप मानोगे नहीं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल मैं यही सोचता था कि आज मम्मी गिटार लेकर आएगी, आज मम्मी गिटार लेकर आएगी, आज मम्मी गिटार लेकर आएगी, आज मम्मी गिटार लेकर आएगी, मगर नहीं आई। बट बचपन में ना जब तुम किसी चीज को इतना चाह लेते हो कि वो आ जाए वो आ जाए वो आ जाए और हर दिन तुम वजह ढूंढते हो कि यार शायद अच्छा मम्मी लेट हो गई तो प्रोबेबली आज तो गिटार लेकर आएगी, आज जल्दी आने वाली तो गिटार लेकर आएगी। मम्मी आई है, हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में सामान नहीं है तो मतलब किसी के हाथ में पकड़ाया है।

0: रही होगा, तो इतने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुए ना इस चीज के, इतनी बार दिल टूटा है मगर फिर भी हार नहीं मानी है हमने। बाद में मम्मी ने गिटार दिलाया मुझे, बहुत टाइम बाद दिलाया था, मगर वो साल साल दिन ब दिन महीने बे महीने जो मन में आस रहती है ना कि यार आज ही आएगा, आज ही आएगा।
1: आप सोते इस उसमें हो, होप में हो कि यार कल सुबह उठूंगा मम्मी ऑफिस जाएगी फिर शाम को जो है मेरे को गिटार मिल जाएगा यार। हाँ ऐसा तो देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ जो है ऐसा, मैंने जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो या किसी क्लासेस के लिए अप्लाई करते हो एंड उसके रिजल्ट का आप इंतजार करते हो कि यार कल रिजल्ट आ जाएगा, उसमें इनका आप रिप्लाई आएगा। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप मेल चेक करते हो बार बार कि आज सो जाती हूँ कल मिल आएगा,
0: कल मिल आ जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना करके। मगर कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है।
1: तो देखो, पर देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हम माही भाई का इंतजार करेंगे, करते रहेंगे जब तक बैंगलोर जीत नहीं जाती।
0: हाँ देखते हैं क्या होता है, फिलहाल देखिए हार जीत तो होता रहेगा, क्रिकेट जीतना चाहिए, क्रिकेट आगे बढ़ना चाहिए,
1: क्रिकेट आगे बढ़ना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ पॉइंट्स टेबल का हाल ये है कि बैंगलोर सबसे ऊपर चल रही है, उसके बाद गुजरात चल रही है, उसके बाद जो है फिर मिडल ऑर्डर आ गया है, और उसके बाद जो चेन्नई है वो सिक्स्थ नंबर पर
0: है, और हमारे सेवेंथ नंबर पर दिल्ली है, तला फॉर रीजन।
1: दिल्ली खुद कह रही है कि जीत जाओ यार।
0: बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। अगर ये मैच चेन्नई जीत जाती है तो चेन्नई एक स्टेप और ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि बाकी सारे टीम के 12 पॉइंट्स हैं।
1: 12 पॉइंट्स हैं।
0: तो और आने वाले सारे मैचेस चेन्नई को जीतना है, सिमिलरली बाकी टीम को आने वाले सारे मैचेस भी हारने पड़ेंगे, तब जाके कुछ अपना बन पाएगा इस साल का। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। अभी यहाँ पे अदनान सामी भाई वेट कर रहे हैं सलाम इश्क मूवी का गाना गाने के लिए, आपके लिए स्पेशली, दिल क्या करे। तो दिल क्या करे, बैठ के रोए और क्या यार।
1: दिल होप करे,
0: दिल उम्मीद में रहता है, तो कभी ना कभी उम्मीद से कभी भी आप हाथ मत छोड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक किरण आ जाती है जो पार करवा देती है, इस सीजन में नहीं तो अगले सीजन में ही सही। जिता धुना प्लीज।
1: बहुत बहुत बुरा किया आपने।
0: थैंक यू, पता है मुझे। मुझे पता है
1: यार, शाहरुख खान की तो वो मत बिगाड़ो।
0: कोलकाता कहाँ पे वैसे, आठवीं में, ठीक है कोई बात नहीं। तो यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Radio on it. Your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

0: बहुत ही बढ़िया गाना, काफी अच्छी मूवी, काफी चर्चा हुई थी इस मूवी की परफॉर्मेंसेस के बारे में, बहुत सारे लोगों ने बात की थी। न्यूयॉर्क मूवी का गाना है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो भाई यहाँ पे कशिश मैडम एक इम्पोर्टेंट बात हमें बताना चाहेंगे, प्लीज बता दीजिए।
1: इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से हमने ये गाना सुना ना न्यूयॉर्क का, सो अभी न्यूयॉर्क में जो है सितारों का ऐसे जमघट सा लगा हुआ है। मतलब बहुत सारे स्टार्स सेलिब्रिटीज जो है वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है मेट गाला 2026। सो हर साल मई में जो है मेट गाला वहाँ पर होता है। ये एक चैरिटी फैशन इवेंट होता है, बट लोगों को काफी बार जो है वीडियोज देख के और रील्स देख के ऐसा लगता है कि यार इट्स अवार्ड फंक्शन और फैशन शो है, बट ऐसा नहीं है। मेट गाला जो है वहाँ का एक फैशन इंस्टीट्यूट है, एक म्यूजियम है। सो क्योंकि म्यूजियम्स को जो है मेंटेन करना काफी महंगा होता है, एक फैशन म्यूजियम है।
0: अच्छा।
1: सो जहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी ड्रेसेस रखी हुई हैं मार्लिन मनरो की और ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज की, सो उसे मेंटेन करने के लिए ये चैरिटी इवेंट किया जाता है।
0: अच्छा।
1: जिसकी जो अगर मैं बोलूँ टिकट जो है वो $70,000 से ज्यादा है।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: ठीक है। सो काफी सारे ब्रांड्स जो है वो सेलिब्रिटीज को जो है ऑफर करते हैं, इनवाइट करते हैं कि हमने ये पैसे दिए हैं एंड आप प्लीज हमारा ये आउटफिट पहन के इस थीम के अकॉर्डिंगली जो है इस प्लेटफॉर्म पर जाइए। सो ऐसा एक फैशन का गाला जो है वो होता है, उस रेड कार्पेट पे वॉक करने के लिए लोग जो है सालों सालों इंतजार करते हैं यार।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि इस बार क्या क्या हो सकता है,
1: क्या क्या हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है एंड किसने कौन सा आउटफिट जो है वो पहन के हमें शो अप किया है, ये सब बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में।
0: अभी यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर

0: सॉन्ग ऑफ द ईयर
1: ये गाना
2: काफी मल्टी कल्चरल अप्रोच है गाने का. मतलब जापानीज इन्फ्लुएंस है इस गाने में, सिर्फ एक ही वर्ड का. तो यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
3: जियो विंदाज़.

0: तो धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: सचेत और परंपरा का एक और अमेजिंग गाना 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश और बिंदास मॉर्निंग जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ. और देखो यार, जैसे ही मैं फैशन की बातें करना शुरू करती हूँ वैसे ही सुधीर जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं यार. बोलते हैं कि यार मुझे हाइड्रेशन पूरा करना है, मुझे पानी पूरा जो है वो पीना है. और आप भागते हुए आए हैं यार. क्यों क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो कि जब मैं फैशन की बात करना चाहती हूँ तब आपको जो है पानी पीना याद आ जाता है? क्यों
1: यार, मैं पानी पीने गया था और उसके बाद मुझे याद आया कि हमने कल भी बताया था अपने लिसनर्स को कि अमीरी कप का जो ट्रॉफी है, कप का ट्रॉफी, वो हमारे ऑफिस आया था कल. तो मेरे कुछ अच्छे अच्छे फोटोज मुझे नहीं मिले. तो मैं बताया, बोलने गया था कि भाई फोटो भेज दो यार, दे दो. तो थोड़ा टाइम लग रहा था फोटो मिलने में.
0: So, आप पर्सनली फोटो लेने गए थे?
1: हाँ.
0: जैसे वो बचपन में होता था पासपोर्ट साइज फोटो अंकल से लेने जाते थे.
1: हाँ, वैसे ही.
0: सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है लेकिन फिर भी फोटो तो जो है सामने
1: खड़े एयर ड्रॉप करवाने गया था.
0: सामने खड़े होके एयर ड्रॉप करवानी पड़ती है. ठीक है गाइस, बात हम कर रहे थे मेट गाला की.
1: Yes, बताइए.
0: तो बहुत सारे अलग अलग आउटफिट जो है वो हमें देखने को मिले. बल्कि मैं कहूँगी आर्ट हमें देखने को मिला. अच्छा. जो फैशन के जरिए दिखाने की कोशिश की गई. एंड इंडिया से भी काफी सारे लोगों ने जो है डेब्यू किया है. मनीष मल्होत्रा ने, जो एक बहुत बड़े डिजाइनर है.
1: हाँ, जानता हूँ.
0: यस यस, आपकी तो पहचान वाली है ना. सो मनीष मल्होत्रा एक ऐसे आउटफिट के साथ उन्होंने वॉक किया जिसमें उन्होंने उनके जो आउटफिट्स बनाते हैं उन आर्टिस्ट्स को जो है ट्रिब्यूट दिया गया. उन सबके साइन उस आउटफिट में है एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. करण जौहर ने अपना डेब्यू किया. एंड साथ में एक मैं एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस की बात करना चाहूंगी. वो जो है ऋतिक रोशन बन के आई थी.
1: क्या बात.
0: यस yes, आपने धूम वाले ऋतिक रोशन देखे? वो पीओपी से वो जो एक मूर्ति बने हुए थे डिसगाइज में. बस एग्जैक्टली वैसे ही जो है एक एक्ट्रेस पहुंची.
1: कौन है वो एक्ट्रेस? बताइए.
0: उनका नाम मुझे नहीं पता. मुझे बस इतना पता है कि वो जो है ऋतिक रोशन बन के आई है और अब इसी नाम से उन्हें जाना जाएगा. अगर मैंने कभी उनकी कोई मूवी देख ली तो मैं आपको दिखाऊंगी ये वही एक्ट्रेस है जो ऋतिक रोशन बन के आई थी. ठीक है. सो अगर आप सबने भी ये आउटफिट्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमें बताइए आपको किसका आउटफिट अच्छा लगा 3311063 पे. अब देखिए फैशन की बातें जो है वो एंड करते हैं और गानों की तरफ आगे बढ़ते हैं. अरिजीत सिंह की आवाज में एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर. इसे एंजॉय कीजिए और हमारे साथ कहिए
1: जियो बिंदास.

0: Golf Short Break. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Hi guys, this is Jonita Gandhi. Jonita Gandhi. Radio Olive, I'm number one. You are listening to me on Radio Olive. Radio Olive. Geo Bindas. Radio
3: Olive, I'm number one. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: सोने का मलका याग्निक ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये पेजर नंबर की जो बात कर रहे हैं, ये गाना हम सुनेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक के जमाने में, जहां आजकल लोग टेक्स्ट भी नहीं करते हैं।
1: और आज के जमाने में अगर ये गाना लिखा होता तो प्रोबेबली इसके लिरिक्स होते हैं, व्हाट इज योर इंस्टा आईडी, व्हाट इज योर टिकटॉक आईडी, व्हाट इज योर गूगल पे आईडी, क्यों कभी पैसे मांगने पड़ते सीधा भाई, कहीं से ब्लॉक कर दे तो गूगल पे ही बच जाता है। तो वही
0: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कशिश
1: और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
0: यार सुदेव, मतलब मुझे तो, मतलब आप तो ये बात कर रहे हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करने की बात कर रहे हो। पहली बात तो मैंने फेसबुक पे कभी आईडी बनाई ही नहीं।
1: क्या बात कर रहे
0: हैं? मैंने फेसबुक अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं किया है। एंड दूसरा, आजकल मैं इंस्टाग्राम भी बहुत कम यूज करती हूँ। आजकल मेरे जितने भी दोस्त हैं वो जो है स्नैपचैट ही यूज करते हैं, वो टेक्स्ट करने में बिलीव ही नहीं करते। उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो तो खाने की फोटो भेज देंगे,
1: स्नैपचैट करते हैं।
0: यार हद तो तब हो गई जब मैं जो है मैंने पूछा मेरे दोस्त से कि तुम क्या कर रहे हो, और उसने मुझे अपने वॉशरूम की फोटो भेज दी।
1: क्या बात,
0: लिटरली टाइल्स की फोटो जिसपे एक कॉकरोच चल रहा था, वो उसने मुझे भेज दी कि मैं वॉशरूम में हूँ। यार मतलब थोड़ा सा
1: काफी ग्राफिक हो चुका है आजकल जो है मामला, क्योंकि देखिए स्मार्टफोन जैसा एक डिवाइस लोगों के हाथ में आ चुका है, तो हम इंस्टेंटली बता सकते हैं लोगों की हाँ कहाँ पे हैं,
0: कहाँ पर हैं, कुछ ज्यादा इजी बना दिया। वरना मुझे मम्मी पापा बताते थे कि जब वो लोग उन्हें किसी चीज की फोटो भेजनी होती थी तो उसके लिए इंटरनेट ऑन करना पड़ता था, और फिर वो वीडियो डाउनलोड करते थे, फोटो डाउनलोड करते थे। मैंने बोला ओ माय गॉड,
1: ये सब तो बहुत दिक्कतें हैं।
0: अब तो डाउनलोड हो ना जाए, इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप पे काफी सारी सेटिंग्स ऑफ करके रखती हूँ।
1: एग्जैक्टली। और एक और चीज, मैं इसके बारे में जब सोच रहा था, कॉन्टेम्प्लेट कर रहा था, तो मैंने रियलाइज किया कि यार देखिए जिस तरीके से हम चीजों को कन्वे करते हैं ना, वो भी बहुत बदल चुका है आजकल के जमाने में। ठीक है, तो पहले अगर तुम्हें किसी से प्यार का इजहार करना है तो तुम लिखते हो बैठ के आराम से, लिखते तुम पढ़ते हो, गालिब को पढ़ते हो, तुम अहमद फराज को पढ़ते हो, फैज अहमद फैज को पढ़ते हो, तुम जॉन एलिया को पढ़ते हो, इतने लोगों को पढ़ते हो, मंतो को पढ़ते हो, प्रेमचंद को पढ़ते हो, इतना सब पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलता है कि यार इनमें से कुछ कुछ चंद अल्फाज जो है इधर उधर से लेके थोड़ा कुछ लिख देते हैं। अभी तो पूरा
0: देखो आजकल भी लिखते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट लिखते हैं,
1: आजकल प्रॉम्प्ट लिखते
0: हैं, AI पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि आई लाइक दिस गर्ल, आई लाइक दिस गाय, एंड ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लीज राइट अ नाइस मैसेज। और सामने वाले को पता है
1: जी
0: कि ये AI से लिखा गया, तो स्पेशली दो तीन गलती की जाती है उसमें, कॉमा हटाया जाता है, फुल स्टॉप हटाया जाता है, स्पेलिंग गलत की जाती है, कि लगे कि हमने लिखा है,
1: डर के लिखा है करके।
0: देखा कितने क्लोजली जानती हूँ
1: मैं यहाँ पे। एक चीज बताता हूँ, जब मुझे किसी ने अपना प्यार इजहार किया था तो मुझे अभी तक वो चीज याद है। ठीक है, तो एक लाइन लिखी थी, उसमें लाइन ऐसा था कि आई नेवर थॉट दैट आई विल फॉल इन लव, बट हियर यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी स्माइलिंग, यू नो। उसके बाद बहुत सारी और चीजें लिखी थी जो मेरी याददाश्त के कारण मुझे याद नहीं आ रही, मगर लास्ट में एंड किया था कि यू गिव मी अ वर्लपूल ऑफ इमोशंस एंड आई थिंक दैट आई एम फॉलिंग फॉर यू। उसने वो लिखा, फॉल तो मैं हो गया। मैंने बोला कि क्या बढ़िया लिखा यार,
0: वर्लपूल
1: वर्लपूल, मैं तो वर्लपूल वही वर्लपूल सुना था हमने, हमें क्या पता था कि
0: सच में कुछ होता है।
1: हाँ, इसको पोएटिकली यूज किया जा सकता है। मेरी आंखें खुल गई, मैंने तो पहले जब प्यार व्यार शुरू हुआ तो मैंने बोला कि ये लिखा कैसे तुमने, मुझे तो ये बताओ। तो फिर उसने बताया कि नहीं, यू नो आई वाज डीपली मैडली इन लव, तो ऐसे आ गया करके। और उसके बाद मैंने, जब मैं कॉलेज गया, मैंने अपने बहुत ही खास दोस्त को सुनाया, ये बताया, वो इतना प्यारा बंदा, ठीक है एक्चुअल अल्फाज हम यूज नहीं कर सकते, इतना प्यारा बंदा, उसने मेरे फोन से उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके खुद को सेंड करके उसने संभाल कर कमा टाइम तक उसे
0: कि मैं नेक्स्ट टाइम इसे यूज करूंगा।
1: हाँ कि कभी तो मैं यूज करूंगा। बट देखिए कुदरत का खेल ही अजीब होता है कि उसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी।
0: राइट। पर देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हैं तो एक बार इश्क करके देखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सबकी वोकैबुलरी, सबकी हिंदी इंग्लिश उर्दू सब
1: ठीक हो जाती है। अब देखो वो भी डिपेंड करता है कि तुम किससे प्यार करते हो। अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो बंदा या बंदी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा और वो करते,
0: अच्छा
1: तुम जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम जॉन कीट्स को पढ़ोगे, तुम रडयार्ड किपलिंग को पढ़ोगे और तुम सिल्विया प्लाथ को पढ़ोगे।
0: वरना ये सब लिखने के बाद अगर सामने वाले को नहीं समझ आया तो वो महंगा
1: नहीं है। मगर अगर तुम उनसे प्यार करते हो जिनको शेरो शायरी का शौक है, ठीक है, जिनको गजल सुनना पसंद है, तो तुम गालिब को सुनोगे, गालिब को पढ़ोगे, तुम फैज अहमद फैज को पढ़ोगे, जॉन एलिया को पढ़ोगे, जॉन एलिया को तो तब भी पढ़ोगे जब दिल टूट जाएगा। जाएगा बट देखिए पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए साहिल लुधियानवी को पढ़ोगे।
0: मैं ना इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि लड़कियां जो है जैसे लड़के तो ये सब पढ़ते हैं कि जी जी। लड़की को जो है वो करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए जो है हम ये सब पोएटिक चीजें लिखेंगे, लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां जो है वो स्पेशली गेम्स के बारे में पढ़ने लग जाती हैं, वो मोटर इंजन के बारे में पढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वो भी अपना जो कहते हैं इंटरेस्ट जो है
0: हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स
1: ठीक है
0: ये सब पढ़ रही है यार लड़कियां,
1: देखती है कि हां भाई क्या हो रहा है क्या चल रहा है
0: क्या हो रहा है गाड़ी के बारे में थोड़ा और जान लूं मैं, ऐसे जानबूझ के इंटीग्रेट की जा रही है गाड़ी के अगर सामने से ये ईवी है ना या इसमें ये ऑटो गियर या ये ऑटो गियर शिफ्ट है, जानबूझ के पढ़ा गया है और वो गाड़ी ढूंढी गई है।
1: 100 गाड़ियां सामने से निकल गई तब कुछ नहीं बोलना, जब ये गाड़ी निकली इसके बारे में बात हुई, मगर मैं तो 100 नंबर दूंगा क्योंकि एफर्ट डाला गया,
0: एफर्ट डाला गया बिल्कुल। लेकिन हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी यार,
1: हमें इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बहुत ही बढ़िया एक लोकल अपडेट जो है हमारे हाथ में है, बट थोड़ी देर बाद जो है हम बताएंगे यहाँ पे गाना

0: Shahrukh Khan at his peak. Phir bhi dil hai Hindustani movie se. Sonu Nigam aur Alka Yagnik ki awaaz mein. Welcome ji, good morning. 106.3 Radio Olive par main hu aapki Kashish
1: aur main hu aapka mezban Sudev aur yahan pe bhai ek bahut hi badhiya update jo hum aapke liye lekar aaye hain. Qtry jo hai second annual aquathlon Azure Beach Doha mein कंडक्ट कर रहा है, होस्ट करने वाला है. और क्या हो गया एकदम से आप ऐसे अज्योर मैंने बोला तो चौंक गए.
0: मतलब अचानक से जो है ऐसी कोई बात जब करते हैं ना सुदेव, तो अचानक से पता नहीं आसमान से कहीं से, जैसे आयरन मैन का सूट आता है ना वैसे अचानक से कहीं से कोट और ऐसे टक्सीडो और ये सब आ जाता है अचानक से.
1: ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम स्टिल नॉट श्योर व्हेदर आई हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्ट और नॉट.
0: यस, बट देखिए प्रोनंसिएशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप ध्यान से सुनिएगा. ओके,
1: तो यस, एक बहुत ही बढ़िया बात है. इसमें सबसे खास बात ये है कि ये एक सेकेंड एनुअल एक्वाथलॉन है जो दोहा पे होस्ट किया जा रहा है. साथ में 5 किलोमीटर रन भी जो है हुआ और इवेंट को कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन का सपोर्ट था और ये केतेफान आइलैंड नॉर्थ पर ऑर्गेनाइज हुआ था. और कंपटीशन में 265 एक्वाथलॉन पार्टिसिपेंट्स और 100 रनर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया, जिसमें कतर रेसिडेंट्स और जीसीसी से स्ट्रॉन्ग टर्नआउट था. इवेंट में इंक्लूसिव कैटेगरी एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज जो है वो भी थी और डाइवर्सिटी और पार्टिसिपेशन को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है प्रमोट किया था. अब इस रेस में एक्चुअली होता क्या है, इसमें स्विम प्लस सीनिक रन था और इस इवेंट ने केतेफान आइलैंड नॉर्थ को इमर्जिंग स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में जो है हाईलाइट किया है. तो एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्टिंग इवेंट जो है हुआ था यहाँ पे दोहा में और उसके बारे में जो अपडेट्स आए थे वो मैंने आपको बताया.
0: बिल्कुल, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है अब दोहा में हो रहे हैं. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो जान वापस आ रही है धीरे धीरे करके, वो जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे वो सब वापस आ रहा है. ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा 106.3 रेडियो ऑलिव पर. फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम अल्लाह जाने, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में. इस गाने को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ कहते रहिए
1: जियो बिंदा.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: गाने का नाम सोच। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश
1: और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं धीरे धीरे निकलने का वक्त आ चुका है हमारे, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में मुस्कान यहाँ पहुंच जाएगी, तो मुस्कान का खुली बाहो से स्वागत कीजिएगा और जितना प्यार हमें दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार मुस्कान को दीजिएगा। और जाते जाते जाते यही याद दिलाएंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में
0: याद रखना। अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, से एंजॉय कीजिए और हमारे साथ कहते रहिए
1: जियो बिंदास।
0: अपना ख्याल रखना और मुझे याद

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है. आज नया दिन है, 5 तारीख है महीने की. और यू नो, जैसे जैसे महीने के कुछ दिन आगे निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कितना खूबसूरत है हर महीना. हम कुछ नए टारगेट्स बनाते हैं, हर महीना हम कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं. और आज का दिन भी एक सिंपल से रिमाइंडर के साथ स्टार्ट करते हैं. कभी कभी हम सोचते हैं कि कल से बेटर करेंगे, मतलब कल जो किया था उससे बेटर करेंगे, नेक्स्ट वीक से चेंज लाएंगे. लेकिन सच क्या है कि लाइफ कभी परफेक्ट टाइमिंग का वेट ही नहीं करती. जो भी चेंज है वो आज से ही स्टार्ट होता है. सो अगर आज आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हो या थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो, सो इट्स ओके. क्लैरिटी का वेट मत करो, मूवमेंट स्टार्ट करो. मतलब हो सकता है कि ये क्लैरिटी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, बट इट्स ओके. आपको बस अपना काम करते रहना चाहिए. और इसी काम के साथ आई विल से कि आज शुरू करते हैं लाइफ मस्त है. सो बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन हम वो सारी बातें करें जो कतर में चल रहा है, जो आपकी और मेरी लाइफ में चल रहा है, जो बॉलीवुड में नया आया है, और स्पेशली हेल्थ एंड अदर थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी. और बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ मुस्कान हाजिर है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM with this beautiful track. Stay tuned. Jio, Bindaas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो कतर एजुकेशन सिस्टम एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर आ रहा है और ये अपडेट ऑनेस्टली हार्ट टचिंग बहुत ज्यादा है। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है नया पोर्टल जिस पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़े से स्पेशल हैं हम सबके लिए। अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले क्या होता था, मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता था और फिर आता था डिले। और अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, SMS अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली दिस पोर्टल कॉल्ड मारिफ विच इज MAARIF। सो आपको क्या करना है, प्रोसेस बहुत सिंपल जो है उसे बना दिया गया है, डिफाइंड हो गया है। अगर ये सिर्फ मैं बात करूं कि सिर्फ सिंपल करने के लिए नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि हर बच्चा डिजर्व करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। डजेंट मैटर उसको क्या प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है या डेवलपमेंट डिले है, बस सिस्टम उनके लिए अपने आप को चेंज कर रहा है। एंड आई फील कि दिस इज द वन थिंग जो मुझे कतर की सबसे ज्यादा स्पेशल लगती है कि एवरीथिंग इज स्पेशल हेयर। सो आई विल से कि अगर आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या आपको लगता है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन फटाफट से बता देनी चाहिए तो उन्हें कॉल कीजिए और बता दीजिए। और सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, stay tuned, Jio Bindas. Cool song. Radio Olive Bird. Aane wala gana. Cool song of the year.

भाई आज की किताब थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी इंटेलिजेंट लाइक मी और थोड़ी सी मिस्टीरियस लाइक यू. यू आर लिस्टिंग रेडियो 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो इस किताब का नाम है द नेम ऑफ द रोज, जिसमें आज आपको बहुत कुछ नया सुनने के लिए मिलने वाला है. So, 1980 की ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर जिस किताब के बारे में हर कोई जानता है और एक यूनिक कॉम्बिनेशन है मिस्ट्री, हिस्ट्री और फिलोसफी का. स्टोरी एक जगह से स्टार्ट होती है जहां आपको एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और वो देखने के लिए मिलता है. लेकिन ये सिर्फ कोई स्टोरी नहीं है, ये थिंकिंग की स्टोरी है. हर पेज आपको चैलेंज करता है लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस के लिए, और आप बस यही सोचते रहते हो कि अब क्या होगा. ये बुक बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा डीप जरूर है. सो आई पर्सनली लाइक मिस्टीरियस बुक जिसमें आपको कुछ ना कुछ यू नो हर थोड़ी देर में सोचने पर, आपका दिमाग चलाने पर आपको मजबूर कर दिया जाए कि भाई अब क्या होगा. सो आप मुझे बताओ क्या आपको भी इसी तरह की किताबें पसंद है, या आई यू नो वेन एवर आई टॉक अबाउट यू नो लव बुक्स या रोम कॉम बुक्स तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये किताब हमने पढ़ी हुई है, इस किताब के बारे में बेस्ट पार्ट वो मुझे बताते हैं. सो आप मुझे बताइए क्या आपने इस किताब को पढ़ा है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, विच इज द नेम ऑफ द रोज. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

भाई एक फैशन ट्रेंड जो बहुत नया लगता है आपको लेकिन एक्चुअली बहुत पुराना है, बैंगल्स। वो जो स्टेक बैंगल्स आप बड़े बड़े ब्रांड्स में देखते हो ना, चाहे वो वुडन के हों या फिर वो गोल्डन या सिल्वर कलर के, जो हम बचपन से देखते आए हैं और हर फेस्टिवल के पार्ट बनते आए हैं। सो आज वही बैंगल्स की बात करती हूँ। वो लग्जरी ब्रांड्स हाई प्राइजेस पर सेल कर रहे हैं। यू नो दिस लास्ट वीकेंड मैं शॉपिंग करने गई थी, जहाँ पर मैंने मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स को ऐसे स्टेक बैंगल्स को देखा जो बेच रहे थे, और उनका प्राइस अगर आप देख लोगे तो आपको लगेगा कि यार जब घर जाएंगे तब लोकल मार्केट से खरीद लेंगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। जो पहले बहुत नॉर्मल था अब प्रीमियम बन गया है। डिफरेंस क्या है? स्टाइलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेकिन उसका असली मतलब क्या है? कल्चर कभी आउटडेटेड नहीं होता, वो बस रीइन्वेंट होता रहता है। सो आजकल आपने देखा होगा कि यू नो वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहनने के लिए से वुडन बैंगल्स या फिर गोल्ड ज्वेलरी बनाई जा रही है, विच इज एक्चुअली फ्रॉम यू नो आर सभ्यता, जिसमें हमें बताया जाता था कि ये तो 4000 साल पहले से लोग पहनते आ रहे हैं। पर आज के टाइम पे आप उन्हें देखोगे कि वो बताते हैं कि ये उनके ब्रांड का आइटम है, बट एक्चुअली ओरिजिनल हमें पता है कि क्या है। सो आई विल से कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ज्वेलरी खरीदो तो याद रखना कि ये ज्वेलरी आपके घर के आसपास आपकी कंट्री में बहुत ही सस्ती मिलती है। सो यू कैन बाय व्हेनेवर यू गो। और सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। Radio on.

Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सो भाई आज क्या होने वाला है, केएल राहुल दिल्ली को जिताएंगे या अंशुल चेन्नई को किंग बनाएंगे? ये तो शाम को पता चलेगा 5 बजे जब मैच होगा स्टार दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो बेसिकली अगर मैं कल की मैच की बात करूं, मुंबई वर्सेस लखनऊ, जिसमें मुंबई ने इस मैच को जीत लिया है सिर्फ 18 ओवर 4 बॉलों में। सो स्कोर का जो टारगेट था वो 228 थे, लखनऊ ने बनाए 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई ने उसे बीट किया, 229 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे, वो भी सिर्फ 18 ओवर 4 बॉलों में। अब आज की अगर मैं बात करूं तो यस, देयर इज वन मैच विच इज दिल्ली वर्सेस चेन्नई। अब क्या होने वाला है इस मैच में, कैसा मैथमेटिक्स चलेगा और आज कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, ये तो विद टाइम ही पता चलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम को होने वाला है। विच इज अगर मैं बात करूं कि पिछले मैच में चेन्नई ने दिल्ली को 23 रन से हराया था और ऐसे में दिल्ली के पास अपने घर में हिसाब बराबर करने का जो मौका है वो वापस आ गया है। सो दोनों टीम के लिए मैच प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पॉइंट टेबल में 7th नंबर पर है और चेन्नई 9 मैचेस में से 4 के साथ 6th नंबर पर है। सो चेन्नई का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अब वी विल सी कि आज क्या होने वाला है, हम बात करेंगे मैचेस के बारे में और भी। आप मुझे बताओ कि इन दोनों टीम में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, नंबर है 3311106 3 जियो बिंदास।

0: brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: अगर आप कतर में हो और आपको लगता है कि आउटडोर गर्मी की वजह से पॉसिबल नहीं है जाना, तो आपने अभी तक ऑक्सीजन पार्क को अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यू आर लिसनिंग रेडियो वाले 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन पार्क। ये पार्क स्पेशली डिजाइन किया गया है कतर के क्लाइमेट को ध्यान में रख के। अगर मैं यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करूँ तो शेड्स पाथवेज है, कूलिंग डिजाइन है और ग्रीनरी तो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ पार्क नहीं है, क्लाइमेट स्मार्ट स्पेस है और नाम है ऑक्सीजन पार्क। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रीनरी और एयर फ्लो ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक एनवायरमेंट फ्रेश फील होता है आपको। सो बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट्स। नेचुरल अगर आप हवा लेना चाहते हो तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस मौसम में। सो नेचर और डिजाइन का एक परफेक्ट मिक्स जिसे कह सकते हैं ना, वो है ऑक्सीजन पार्क। यू शुड एक्चुअली विजिट। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी जगहों पर जाना मिस करते थे, हमें लगता है कि यार कभी ना कभी चले जाएंगे, बट ट्रस्ट में हम जहाँ रहते हैं उस जगह को सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं कभी और चले जाएंगे, बट जहाँ हम नहीं रहते हैं वहाँ हम घूमने के बारे में सोचते रहते हैं। सो आई विल से कि जब तक आप यहाँ पे हैं प्लीज एवरीथिंग यू शुड एक्सप्लोर, राइट? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, और अगर आपने अभी से अभी तक मतलब ऑक्सीजन पार्क को ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है तो बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो वी वर टॉकिंग अबाउट मैचेस थोड़ी देर पहले, और अभी बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं कि भाई किसको कौन सी टीम पसंद है, और इन बिटवीन थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अबाउट 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो बेसिकली चेन्नई की जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जिनकी वापसी हो गई है. उन्होंने पिछले मैचेस में लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी, और टीम ने पिछले मुकाबले में मुंबई को हराया भी था, जिससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया था. अब संजू सैमसन टीम के जो है टॉप स्कोरर हैं, रन स्कोरर जिसे कहते हैं, उन्होंने 9 मैचेस में 315 रन बनाए हैं, और अंशुल कंबोज टॉप विकेट टेकर हैं, उन्होंने 9 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं. अब दिल्ली के खिलाफ विकेट लेते ही वो पर्पल कैप हासिल करके टॉप पर पहुंच जाएंगे. सो आज शाम को पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, पर ये सारी जो लाइव अपडेट है ये आपको देने के लिए जबरदस्त इवनिंग्स में सिमरन तो होगी ही. साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं कि भाई कतर में क्या चल रहा है, और थोड़ी सी इमोशनल बातें भी होने वाली हैं. सो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. मुस्कान है आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सो आज एक ऐसा सवाल जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था थोड़े दिन पहले और ऑनेस्टली थोड़ा सा दिल को टच भी करता है। सो आप जो हर दिन करते हैं, हर दिन फील करते हैं, हर दिन एंजॉय करते हैं, वो किसी के लिए ड्रीम हो सकता है। कैन यू इमेजिन? यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो आज मैं बताती हूँ एक सिंपल सा सवाल। भाई चैट जीपीटी से और कुछ एआई से पूछा गया कि अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए ह्यूमन बन जाओ तो क्या करोगे, और जब लोगों ने इस पर रिप्लाई दिया तो आंसर शॉकिंग नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब आप सोचो कि एक दिन के लिए एआई को कहा जा रहा है कि आप इंसान बन जाओगे, तो उसने बोला कि मेरा आंसर ना बिल्कुल भी क्लीशे नहीं होगा कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता हूँ या पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। ऑल्दो एआई जो है उसने कहा कि मैं पिज़्ज़ा टेस्ट करना चाहता हूँ, बट उसने बोला कि मैं ऐसा आंसर नहीं करना चाहता। उसने बोला कि आई विल लुक एट द स्काई, मतलब वो आसमान देखना चाहता है। सोचिए, जो चीज़ हम रोज़ देख सकते हैं वो किसी के लिए एक सपना हो सकती है। उसने कहा कि आई विल क्राई, क्योंकि इमोशंस फील करना सबके पास लग्जरी नहीं होती। और एक और आंसर था, उसने कहा आई विल फॉल इन लव, मतलब ह्यूमन होना मतलब सिर्फ जीना नहीं है भाई, फील करना है। और शायद हम वही भूल गए हैं, हम इतना बिजी हो गए हैं स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस में और रूटीन में कि हमें सिंपल चीज़ें फील करना आता ही नहीं। हमने बंद कर दिया स्काई देखना, स्लो चलना, किसी से बात करना, किसी से प्यार करना, ये सब बेसिक नहीं, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं। तो आज अगर आपके पास एक नॉर्मल दिन है तो उसे थोड़ा सा लाइटली मत लो, क्योंकि जो आपके पास डेली है वो किसी के लिए सपना है। और आई विल से कि इस मोमेंट को हमेशा एंजॉय कीजिए जो आपके पास है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यूर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
3: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो आई विल से कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं होता, फीलिंग्स होती है, और समर में ये फीलिंग जो है वो कलर्स से आती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. कूल टोन्ड कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, जैसे कि टील प्लस बेबी ब्लू, सेज ग्रीन प्लस सी ब्लू. मतलब कल जब मैं इन कलर्स को पढ़ रही थी, इनके बारे में देख रही थी, तो अभी तक तो मुझे सिर्फ बेबी पिंक पता था, पर कल मैंने बेबी ब्लू कलर देखा. सेज ग्रीन कलर वॉज वेरी यू नो यूनिक फॉर मी, पर फिर मैंने सी ब्लू देखा. मतलब हर कलर में कुछ ना कुछ वेराइटी है. अब आंसर ये है कि ये कलर इतने पॉपुलर क्यों हैं, तो बहुत ही सिंपल है साइकोलॉजी. गर्मी के सीजन में ब्राइट और डार्क कलर्स ना हीट ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कूल कलर्स वो विजुअली भी ठंडक देते हैं और फील भी करवाते हैं. आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप लाइट ब्लू या पेस्टल शेड्स पहनते हो तो ऑटोमेटिकली आप फ्रेश फील करते हो. आपको लगता है कि यार आई एम फीलिंग सो गुड, क्योंकि एक तो वो बहुत ही फ्रेश फील देते हैं सामने वाले को देखने में भी, और इवन आपको पहनने में भी. कलर सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि फील करने के लिए होता है, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. सो आज का फैशन ना सिर्फ स्टाइल नहीं है बल्कि कंफर्ट का गेम बन चुका है. लूज फिट, ब्रीदेबल फैब्रिक, कूल कलर्स परफेक्ट समर लुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल से कि लिनन शर्ट्स हो, कॉटन कॉर्सेट्स हो, या फिर फ्लोई ड्रेसेस, स्टाइल वही बेस्ट है जो कंफर्टेबल हो विद दिस ब्यूटिफुल कलर जो मैं आपको बता रही थी आज. सो आजकल जो कलर्स इन है वो टील, बेबी ब्लू, सेज ग्रीन और सी ब्लू जैसे कलर्स हैं जो साइन पर बहुत इन है. यू कैन गो विद दीज कलर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

आज बात करते हैं एक ऐसी हैबिट की जो हम सब इग्नोर करते हैं लेकिन हमारी बॉडी धीरे धीरे उससे सफर कर रही है. यस, द थिंग इज जीरो एक्सरसाइज. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और हम यहाँ जिम की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मूवमेंट की. आज का लाइफस्टाइल क्या है यार, सिटिंग जॉब्स है, फोन स्क्रॉलिंग, मिनिमल यू नो फिजिकल एक्टिविटी हम सबकी लाइफ में. मतलब मैं खुद की बात करूँ तो सुबह 10 बजे मैं अपना शो स्टार्ट करती हूँ, विच इज़ लाइफ मस्त है, ठीक है. उसके बाद 1 बजे तक मैं आपसे बातें करती हूँ, तो मैं बैठी रहती हूँ, गाने इन्जॉय कर रही होती हूँ, फ़ोन चला रही होती हूँ, आप लोगों से बातें करने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढ रही होती हूँ. और उसी के साथ फिर धीरे धीरे जब मेरे यहाँ से जाने का टाइम होता है 1 बजे, तो मेरे लंच का टाइम हो जाता है, फिर मैं बस लंच करती हूँ. फिर लंच से आने के बाद मुझे थोड़ा सा आलस आता है, तो मैं थोड़ा आलस करती हूँ. और उसके बाद मैं दिन भर के सारे काम जो है वो निपटाती हूँ, विच इज ऑल्सो यू नो टेबल वर्क, कि बैठे बैठे ही बस कंप्यूटर पे सारे मेल्स करने हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. सो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, फोकस लो हो जाता है, मूड लो हो जाता है, और बॉडी मूव नहीं करती तो माइंड भी स्लो हो जाता है. इवन रिसर्च कहती है कि रेगुलर मूवमेंट, इवन 20-30 मिनट्स का जो वॉक है वो भी सफिशियंट है. सो ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन एक्टिविटी, मेंटल क्लैरिटी के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाई अब ऑफिस में ही थोड़ा सा उठकर घूमना फिरना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन हम करते क्या है, कल से स्टार्ट करेंगे. और वो कल कभी आता ही नहीं है. हेल्थ एक दिन में नहीं गिरती, स्लोली डिक्लाइन होती है. और सॉल्यूशन यही है कि धीरे धीरे आप चीज़ें बदलने की कोशिश करो. मतलब अगर आप ऑफिस में नहीं चल पा रहे हो तो भाई स्टेयर्स यूज़ कर लो. जैसे मेरा ऑफिस जो है वो 14th फ्लोर पर है, तो व्हाट आई ट्राई कि भाई जितने फ्लोर तक मैं जा सकती हूँ पहले स्टेयर्स से मैं जाती हूँ, और उसके बाद मैं लिफ्ट लेने की कोशिश करती हूँ. थोड़ा

वॉक हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, और फिर परफेक्ट वर्कआउट तो नहीं पर यस थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है. सो आई विल से कि आप भी ट्राई करना कल से. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सो दिस इज द टाइम आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा रैप अप करके, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हर दिन ये फील होता होगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो हम ना अक्सर सोचते हैं कि लाइफ तब बेटर होगी जब सब कुछ सॉर्टेड होगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा. लेकिन सच क्या है, लाइफ परफेक्ट होने का वेट नहीं करती, वो बस चलती रहती है, कभी परफेक्ट नहीं होती. तो आज अगर आपका दिन थोड़ा सा इम्परफेक्ट था या थोड़ा सा मेसी था मॉर्निंग में, सो इट्स ओके. प्रोग्रेस लाउड नहीं होती, वो साइलेंट ही होती है. और आजकल फिर से एक नया चांस के लिए आपको लड़ना चाहिए, आपको हर दिन काम करना चाहिए थोड़ा बेटर करने का, थोड़ा स्माइल करने का, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है बॉस, बस वो आगे बढ़ती चली जाती है. एंड आई विल से कि इस बढ़ती हुई लाइफ में आपको भी बढ़ते रहना होगा, हंसते मुस्कुराते, ऐसे मुंह लटका के नहीं कि बस हाँ ठीक है चल रहा है, हो गया, मॉर्निंग वॉज वेरी बैड. कोई बात नहीं, लाइफ इज लाइक दैट ओनली, कभी भी सॉर्टेड नहीं होगी. सो आई विल से कि कल सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर मुस्कान रहेगी हाजिर. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ऑलिव पर सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी मुस्कान के साथ. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

रोशनी चमकी खुदाया तेनू तकिया ते साया तेरे नालों वज सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदलां नूं ए मौसम कोई नवाया मैं पहली वारी वेख्या आसमां तो नशा आया।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: मॉर्निंग्स एंड नाइट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

लगती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: पंकज उदास आपकी आवाज में बहुत सुंदर गाना और आहिस्ता कीजिए बात है यार, इसका वीडियो कितना क्यूट है ना। उस टाइम पे जो भी ऐसे यू नो गजल आ रहा है या फिर कोई इंडी पॉप गाना भी आ रहा है, बहुत सुंदर स्टोरी लाइन होती थी, वीडियोस बहुत क्यूट होती थी। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, तनिषा आगे जो आपके साथ ऑलिव रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। मे 5th है आज, ट्यूसडे का दिन। आज अभी कुछ देर पहले ही इनफैक्ट सिमरन और मैं बात कर रहे थे कि वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और मे आ गया है, मतलब नेक्स्ट मंथ ऐसे होगा कि हाफ साल निकल चुका है, पता ही नहीं चला, काफ़ी जल्दी राइट। पर कुछ महीने ऐसे बहुत लंबे फील हुए थे, जैसे जनवरी और मार्च, अरे भाई जाने का ही नाम नहीं ले रहे थे। ये कमाल गाना आपके लिए, अगर आपने हमारा डांस का वीडियो नहीं देखा है जिसमें बहुत ही ऐसे शाइनिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं आरजे सुदेव और आरजे सिमरन ने, तो जरूर जाइएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर और चेकआउट कीजिएगा वो। सुंदर गाना और सुंदर सीरीज भी।
1: मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो।
0: कुछ ना कहो मूवी से ये खूबसूरत गाना। अरे अरे कमाल, ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं एज यूजुअल यू नो, बट शुरुआत कैसे होगी आपके हाल चाल से। सुपर एफ से आ जाइए 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए क्या हाल चाल है। ऑलरेडी मुझे मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आ चुका है, आप भी बताएं कि कैसे हैं, हाउ हैज द डे बिन सो फार, व्हाट्स द मूड फॉर दिस ट्यूसडे। फिलहाल एंजॉय करते हैं रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो ऑलिव

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: अनुराग सैकिया और रोमिकी वाज में मिस मैच सीजन 3 से इश्क है ये बहुत सुंदर गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और ध्यान से सुनिए मेरी बात ठीक है और गौर कीजिएगा और प्रैक्टिस भी दिस जमाना इज जहरीला वी ऑल नो दैट दिस जमाना इज जहरीला इन विच यू आर स्वीट लाइक शीरा ओहो मिठास ही आ गई एकदम से This zamana is zehreela in which you are sweet like Sheera and precious like Heera, meri jaan. Haan ji. So, choti-choti baaton ko apna mood ruin na karne de. Enjoy kare apne din ko. Aaj ka din dubara lot kar nahi aayega. So, waste nahi karne ka hai. Kisi ne kuch chhoti si baat bol di, us pe aise mood kharaab karke pura din baith gaye. Nahi yaar, jaane do. Do kaano ka istamal tabhi karna hota hai. Ek se sunne ka, dusre se nikal dene ka. चिल करने का एंड यू आर वेरी प्रेशियस मेरी जन डू नॉट वेस्ट योर डेज लाइक दैट ओके ख्याल रखा करो और खुश रहा करो बाकी खुश करने के लिए आपको एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है बहुत ही प्यारा सा फ्यूजन है आइए साथ में एंजॉय करते हैं सुन रहे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है कूल सॉन्ग

कुछ ना कहो मूवी से अच्छी लगती हो लियोन रेडियो 106.3 FM दिनेश आपके साथ वाले विचार चल रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप भी एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट हैं तो ध्यान से सुनिए, मीटियर शावर होने वाला है ईटीए एक्विरिड्स एंड ये विजिबल होने वाला है कतर में आज रात को। और बेस्ट टाइम है इसका 1 एम से लेकर 4 एम तक का प्री डॉन आवर्स यू नो। एंड पीक व्यूइंग मतलब डेट तो वैसे इसका 3rd to 7th तक है, कभी भी दिख सकता है। पीक व्यूइंग जो है और बेटर विजिबिलिटी विल बी टुनाइट यू नो 5th or 6th में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 20 to 30 मीटर्स आपको देखने को मिलेंगे पर आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, विटनेस करना चाहते हैं तो यू शुड गो टू अ डार्क एरिया सिटी लाइट से काफ़ी दूर एंड 20-30 मिनट्स का वक्त लगेगा फॉर योर आइज टू एडजस्ट। कोई टेलीस्कोप्स की जरूरत नहीं है, एकदम नेकेड आइज से विजिबल है। ब्राइट मूनलाइट जो है वो रिड्यूस कर सकती है विजिबिलिटी को, सो मेक श्योर कि सिटी लाइट से तो दूरी हो सो दैट अडेप्ट करने में इजी हो आपके लिए। अगर आप जाएं और देखें तो जरूर मुझे भी बताइएगा, ठीक है? शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस 3311 1063 पर।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला भी चार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge
4: in association with
5: Homes Are Us. We complete your home.
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
1: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: करण औजला की आवाज में बच के ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. पर कितनी भी बचने की कोशिश कर ले, किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस हमें हो ही जाता है. एंड वी ऑल नीड टू फाइंड आउट यू नो सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज उस स्ट्रेस को एंजाइटी से कोप अप करने के लिए, है ना. तो मैंने एक एक्टिविटी ढूंढी है अपने लिए विच हैज बीन हेल्पिंग मी अलॉट एंड इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी. सो आई हैव गॉट दोज कलरिंग बुक्स फॉर अडल्ट एंड बढ़िया सुंदर सा एक कलरिंग पेन्स का मैं सेट लेकर आई हूँ एंड आई कलर उसको बैठ के बहुत ऐसे अच्छा लगता है, गाने चला के मस्त सुकून से एंड आई समहाउ फील वेरी काम. पर यस्टरडे व्हेन आई वाज डूम स्क्रोलिंग तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक बहुत कमाल चीज देखी. नाउ मार्केट में आ गए हैं कलरिंग ब्लैंकेट्स. यस आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज लिटिल एंड यू नो ठंड के टाइम पे बेड पे बैठ कर अगर पढ़ रही हूँ तो ब्लैंकेट लिया हुआ है या फिर यू नो क्विल्ट ले रखा है. तो कभी ना कभी ऐसे पता नहीं क्यों रैंडमली मन करता था कि पेन से लिख दूँ उसके ऊपर. और कई बार ऐसे लीव्स वगैरह अगर उस पर बनी है तो मैं उसको कलर कर देती थी पेन से. फिर जब मम्मी का ध्यान पड़ता था तब ऐसे पढ़ती थी चार्टे वगैरह. बट ठीक है, गुड मेमोरीज स्टिल. सो जब मैंने वो ब्लैंकेट देखा आई वाज लाइक आई नीड टू हैव दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर. बट इट इज सच अ अमेजिंग थिंग यू नो दैट एंटायर ब्लैंकेट उसमें बहुत सुंदर से ऐसे मोटिव्स बने हुए हैं और आप उसको कलर कर सकते हैं. And it was looking so beautiful after all the coloring was done. So I need to have that. अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा कलरिंग ब्लैंकेट के नाम से. You will find that. And I was wondering कि भाई ये कितना काम कर देता होगा ना. मतलब वो जो स्ट्रेस रिलीवर हम ढूंढ रहे हैं इससे बेस्ट क्या होगा. बेड पे हो मस्त ओढ़ रखा है वो ठंड में और कलर कर रहे हो, आया है सुकून, है ना. सेंडिंग फ्रेश होम ऑफ द आवर इसी बात पे. सुन रहे हो रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: रेडियो

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Denisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. Aur bahut sari videos dekhi hungi abhi social media pe jo bahut rotate ho rahi hai. Dugong Adventure World ki, which is an outdoor theme park event, aur 900 park mein ye ho raha hai. Yahan pe bahut sari amazing rides hain, live shows ho rahe hain, performances hain, mascots hain, interactive activities hain. बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए इट इज फुल फैमिली फ्रेंडली. और यू नो आप वहाँ पे फूड कियोस्क मिलेंगे तो खाना भी बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे इवेंट बूथ्स हैं, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, फुल लॉन, मजेदार ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है. तो देरी किस बात की, 9th मई तक ये चलने वाला है. और वीकडेज का टाइम संडे टू वेंसडे का रहेगा, 4 PM से लेकर 10 PM. और वीकेंड्स पे दैट इज आज से लेकर सैटरडे तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक. अगर आपको इसकी टिकट्स चाहिए तो फटाफट से जाइए स्नूनू एस सिटी पर, वहां पर इसकी टिकट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं. अलोंग विद दैट यू शुड गो ऑन आर सोशल मीडिया radioolive.qa, क्योंकि वहां पर चल रहा है कॉन्टेस्ट जहां आप जीत सकते हैं डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड के टिकट्स. यस, गो एंड चेक इट आउट और सुनते रहिए रेडियो ओलिव. जियो बिंदास.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और भाई सबसे बड़ा त्योहार जो है फैशन का वो शुरू हो चुका है, मेट गाला. सो फर्स्ट डे पे तो इंडियंस, जितने भी इंडियंस गए हैं मेट गाला में, दे ओन्ड इट. सो इस बार, हर बार एक थीम होती है, इस बार का जो थीम है वो है फैशन इज आर्ट. यस, सो उसके बेसिस पे सारी यू नो ड्रेसेस होनी थी. द डिजाइनर्स वर सपोज टू यू नो वर्क अराउंड दैट थीम. लास्ट ईयर दिलजीत दोसांज और शाहरुख खान लेफ्ट अ मार्क, अमेजिंग इट वॉज. एंड इस बार करण जौहर ने डेब्यू किया है एंड he did a great job. So he was wearing some kind of paintings, you know, like unka jo overcoat tha, jacket tha, I don't know what to call that exactly because it was too big. Kuch log keh rahe ki Diljit ko copy karne ki koshish kari hai, but no, the two looks are absolutely different. Diljit was like royalty bhai, but Karan, he did a great job. Manish Malhotra ka unhone design pehna hai and Manish Malhotra was also there. He was also wearing a beautiful piece. और खास बात उनकी जो डिज़ाइन थी उसकी ये थी कि जितने भी आर्टिसंस ने उसे बनाया है उन सबके सिग्नेचर थे उनके कोट पर और बहुत सुंदर मोटिव्स बने हुए थे. इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. एंड जयपुर से रॉयल्टीज वर ऑल्सो देयर एंड दे ऑल्सो वर अमेजिंग. ईशा अंबानी, beautiful saree she was carrying and she was also carrying the king of fruits from India, a mango. Yes, I love that. So yeah, the Indians literally owned it. And as we all know ki jo red carpet hota hai Met Gala ka, usko hamesha close Beyonce karti hai. Beyonce ke baad nobody comes in, it closes after that. And this time also she closed it and she closed it in style. She broke one rule also. Blue Ivy also debuted there and she is a teenager. Nobody below 18 is allowed to attend the Met Gala but Beyonce's daughter can. And obviously, I mean, come on. And I mean, Tor cannot say no to Beyonce, right? So yeah, आपको कौन से लुक्स पसंद आए अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा. देखो हम सब अपने पजामा में बैठ के जज तो कर ही रहे होते हैं, ठीक है, कि यार इसका ड्रेस अच्छा लग रहा है, यार इसका बड़ा अच्छा लग रहा है. तो देखा तो आपने भी होगा, तो बताइए अपने कोई ओपिनियंस है तो 3311 1063 पर. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल, जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

नीति मोहन और शादाब की आवाज में काले नैना फ्रॉम द मूवी शमशेरा ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनिषा किस साथ है आप? ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड आई वॉन्ट टू आस्क ऑल दीज लग्जरी ब्रांड्स कि ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये कुछ भी बेचेंगे और हम खरीद लेंगे. होता तो ऐसा ही है. ट्रेंड बन जाता है समहा और वो इतनी इलॉजिकल चीज़ें होती है. जैसे अभी शनैल लेकर आया है बेयर फुट शूज़. उसमें सिर्फ ना हील वाली साइड पे थोड़ा सा ऐसे कुछ सोल सा लगा दिया है, बाकी कुछ नहीं है उस जूते में. उसे आप जूता बोल कैसे सकते हो पहली बात? क्योंकि जो पर्पस होता है एक शू का, हमारे फीट को कवर करना सो दैट यू नो कोई इंजरी ना हो और कुछ गंदा पड़ा है तो हमारे पैर ना गंदे हो जाए, पर वो है ही नहीं. इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल. हील पे छोटा सा कुछ लगा दिया है, रेस्ट आप बेयर फुट चलो. इज इट पॉसिबल? इज इट लॉजिकल? इज इट रैशनल? आई वॉन्ट टू आस्क कि अगर डिजाइनर्स ने ऐसे बहुत कुछ क्रिएटिव करने का सोच के डिजाइन बना भी दिया तो इसे अप्रूव कैसे कर दिया गया? आई एम अम्यूज्ड, आई एम अपॉल्ड. एंड हु आर द पीपल हु आर बाइंग दैट? दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू नो. इफ यू हैवंट सीन दोज शनैल बेयर फुट शूज, you should check them out and you will understand what I'm trying to say here. Sending an amazing track your way. Stay tuned and Jio Bindas.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 10

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: दिशा।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में कबीर सिंह से तुझे कितना चाहने लगे हम। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और एक इतनी बढ़िया बात करने वाली हूँ मैं कि मजा आ जाएगा आपको सुन के। सो somebody said there is no right and wrong, only relevant and irrelevant, and that makes a lot of sense. You know, बहुत बार ऐसा होता है कि सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता उस सिचुएशन में, सिर्फ वही मायने रखता है जो उस समय उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि यही रिएक्शन होना चाहिए था, यू नो। एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव, एवरीबडी हैज़ देयर ओन लेंस जिससे वो दुनिया को देखते हैं। तो मेरे लिए जो सही है शायद वो आपके लिए गलत होगा, जो आपके लिए सही है शायद वो मेरे लिए गलत होगा। इट कैन बी वाइस वर्सा, राइट? सो राइट और रॉन्ग वाला जो ये एक परसेप्शन है ना, इट इज सच अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। एंड जिस दिन हम ये चीज़ समझ गए उस दिन लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम इसके चक्कर में ही फंसे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये सही नहीं है, वो करना चाहिए, वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम इस डिलेमा में हम फंसे रहते हैं। एंड कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं या फिर ये सोच सोच के गलत डिसीजन ले लेते हैं। सो द डे वी रियलाइज कि देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज़ ओनली रेलिवेंट एंड इररेलीवेंट एज पर द सिचुएशंस, बहुत चीजें इजी हो जाएंगी, बहुत सोचना कम कर देंगे हम। सच्ची सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास। कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान की आवाज में शब्द मूवी से शोरो सी भाई ऐश्वर्या राय क्रेजी सुंदर।
1: और ट्रेंड में क्या है, व्हाट्स ट्रेंडिंग,
0: ट्रेंड में क्या चल रहा है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो एफएम 106.3 एफएम, दिनेश आपके साथ ऑलिवी चौ चल रहा है यहाँ पर। और ट्रेंड में है एक बंदा फिलहाल, कैलोपुटिक्स नाम से उनका आईडी है इंस्टाग्राम पे, एंड 21 पोस्ट है उनके पेज पे सिर्फ, और 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, 30 मार्च को उस बंदे ने पोस्ट करना शुरू किया था और 31 डेज में अप्रैल आते आते तक ही हैड 3.1 million plus followers. Now, why his content is so unique and why people loved it? Because, you know, वो बहुत वो costumes बनाते हैं अपनी and बहुत random जगहों पे random चीज़ों से वो अपनी costumes बनाते हैं और shoot करते हैं and it is super cool. बहुत ही कमाल का content है उस बंदे का and सबसे बड़ी बात, Instagram wants to feature him on their own page. Instagram का अपना एक पेज है जहाँ पे वो ट्रेंडिंग चीज़ें डाल रहे होते हैं. So they have commented quite a few times on that guy's post, Calopotics पेज पे, कि we want to feature you on our page. Please respond to the DM. बंदा जवाब नहीं देता, वो दूसरे कमेंट्स का रिप्लाई कर देगा, Instagram को रिप्लाई ही नहीं कर रहा है वो. Crazy यार, मतलब एंड पीपल आर हैविंग फन ओवर इट, कि हम सब चाहते हैं कि यू नो हमारी कोई रील उठा के इंस्टाग्राम अपने पेज पे डाल दे, ट्रेंड कर जाएंगे, फेमस हो जाएंगे. दिस गाय इंस्टाग्राम इज डाइंग टू यू नो शेयर हिज कॉन्टेंट ऑन देयर पेज, बट ही इज लाइक या व्हाटएवर आई विल से अबाउट दैट.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: अब लेर लगा और हो जा रिचार्ज.
3: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us. We complete your home.
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
6: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी. कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर.

0: तनीषा के साथ आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और वक्त हो गया मेरे जाने का, मेरी जान. लौट कर आऊंगी कल दोपहर 2 बजे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ज्यादा मिस नहीं कीजिएगा मुझे. अगर करें तो हमारे सोशल मीडिया पे चले जाना. हाँ जी, radioolive.qa इज द हैंडल. वहां पे आपको वीडियोस वगैरह दिखी जाएंगी. और आजकल तो हम डांस वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा. कमेंट शॉमेंट कर दीजिएगा नहीं किया है अभी तक तो. और बढ़िया तरीके से अपना डे स्पेंड करना है. छोटी छोटी चीज़ों से अपना मूड बिल्कुल रुइन नहीं करना है, ठीक है. 2 मिनट का रिएक्शन देखिए उस बात को, वहीं छोड़ देने का, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. और सुनते रहिए हमें, बस स्ट्रेस दूर आपका करने की जिम्मेदारी हमारी है. बढ़िया बढ़िया गाने चला के और अभी सिमरन आती होगी, सो आपकी इवनिंग भी एकदम सॉर्टेड है. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. जियो बिंदास मेरी जान.
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: हिट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के वी लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.

है सर आपका आज का दिन, किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको, जैसा भी अपने दिन के बारे में बताइए एंड आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दीजिए इस वादे के साथ कि 9 बजे तक आप मुझे जो है वो सुनने वाले हैं। अपना काम करते रहिए, रेडियो को ऑन रखिए, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे आपकी गाड़ी में, चाहे आपके घर में, सिमरन गौरी बजनी चाहिए। सुंदरी रेडियो ऑलिव कॉल के जरिए जियो बिंदास, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो।

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो Savings, Commercial Bank. Save and win.
3: Hi, Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashwin Vasi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.
9: 106.3 Radio Olive. Jio Bindas. Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
10: सिमरन के साथ।
11: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
12: जॉय आलूकास, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
13: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: है वो क्या चल रहा है मैं आपको साफ साफ बता देते हैं। दिल्ली और चेन्नई का मैच चल रहा है, दिल्ली अभी खेल रही है, चार ओवर दिल्ली के कंप्लीट हो चुके हैं, स्कोर हो गया 29 और विकेट जो है वो कितने जा चुके हैं, एक विकेट का नुकसान जो है वो अभी तक दिल्ली का जो है वो हो चुका है। सो कौन कौन दिल्ली से है जी, कौन कौन चेन्नई से, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है प्लीज मुझे बताइएगा। म्यूजिक ऑन है, सिमरन कौर की बातें ऑन है, चक्को फिर फट्टे।
1: T20 Score update presented by
2: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 Mei tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.
5: Zabardast hit.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट।

हाँ जी, रेस से आप ये गाना सुने के सुनिधि चौहान की आवाज। जी मैं जी सुने हो कितना देखिए हाल चाल सच अकाल सिमरन कौर आपके साथ। मौसम के बारे में हर कोई बात कर रहा है तो मैं भी बात करती हूँ। देखो यार, गर्मी का एक मैजिक है अपने कतर में कि बिना गीजर के पानी गर्म आपको मिलेगा जब भी आप चाहो, चाहे रात में भी चाहो, गर्मा गर्म पानी जो है परोसा जाएगा आपके लिए। बालों के लिए एक्चुअली काफी ज्यादा खराब होता है, सो मेक श्योर कि उसके लिए आप ठंडा जो पानी है वो एटलीस्ट हेयर वॉश के लिए वो यूज करें। अभी फिलहाल के लिए मौसम क्या चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ। वेदर ऑफकोर्स दिन में जो है वो तबाही मचा देता है, मतलब 40 से ऊपर जो है वो जा रहा है। अभी के लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फील्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 32% है। सो ये है वेदर के हाल में आपको मेरी आंखों के सामने जो है वो जो मैच हो रहा है दिल्ली और चेन्नई का वो बता देती हूँ। 6.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद मैच में स्कोर कर लिया है दिल्ली ने 39 एंड 2 विकेट का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट टाइम दिल्ली के साथ बहुत बुरी हुई थी यार, आई होप आज अच्छा हो।

प्यारा गाना यार, बहुत अंडररेटेड सॉन्ग है यार ये. प्यार से भी प्यार हो जाता है यार इस गाने को सुन के. देखो हम सब अपने अपने घरों से दूर रहते हैं, काम करते हैं, अब ऐसे टाइम पे आपका बर्थडे, आपकी मम्मी का बर्थडे, या फिर आपकी वाइफ का बर्थडे, या फिर आपके बच्चों का बर्थडे, मतलब किसी ना किसी का बर्थडे जो है वो आता रहता है. और ऐसे टाइम पे हम सब क्या मिस करते हैं, हम लोग मिस करते हैं कि भाई यार वो केक कटिंग जो एक बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो मिस करते हैं. सो मैंने आज ना एक सोशल मीडिया पे आइडिया देखा, ओके. सो वो आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि यार ये आइडिया तो मैं भी करना चाहूंगी, और ये आइडिया के बारे में मैं आपको भी बताना चाहूंगी. बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया था. सो उसमें क्या है कि जब भी हम अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, सो ऐसे टाइम पे किसी का नहीं भी बर्थडे, या फिर किसी एक का बर्थडे है बाकी चारों का बर्थडे नहीं है, सो एक ही केक पे उन्होंने चार, जैसे एक केक की चार साइड होती है, हर एक साइड पे एक बर्थडे की डेट लिखी हुई थी. फॉर एग्जांपल मेरा 23 अगस्त होता है, मेरे भाई का 10 अक्टूबर होता है, मेरे जीजू का 14 जुलाई होता है, और दीदी का 7 दिसंबर होता है. तो हर एक पार्ट पे एक डेट लिखी हुई है, और उसके बाद सारे फैमिली मेंबर मिलके उस केक को काट रहे हैं. हाउ स्वीट यार, ये आइडिया मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया लगा, आई एम लाइक यार इस बार ये आइडिया मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि सालों ही हो गए यार एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ बर्थडे मनाए हुए. रेडियो ऑलिव कहते रहिए जी ओ बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.

दीदार नहीं दिया तो सिमरन कौर ने दीदार दे दिया आपको, वो भी रेडियो पे। बेबी महंगा जी सुनियो कितना देखी हाल चाल। एक चीज याद रखना, अरे कौन से वाली, मैं आपको याद दिला देती हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए।

चलिए मैं क्विकली आपको स्कोर जो है बता देती हूँ। दिल्ली और चेन्नई का मैच चल रहा है, 13 ओवर कंप्लीट होने के बाद दिल्ली का स्कोर है 77, 5 विकेट जा चुके हैं। भाई साहब क्या हो रहा है ये, वापस लौटूंगी थोड़ी देर में क्योंकि प्रेयर का टाइम होने वाला है।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: Hi, Radio Olive.
2: Radio Olive.
1: 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
2: Shah Rukh Khan.
3: I'm in number one. Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
0: Zabardast evening. Make you drive golden with
7: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
8: Supported by Homes R Us. We

लोग झूठा ही सही मेट गाला जो है वो खेल रहे हैं। मैं कह जी सुनिए कितना देखिए हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ और आप सबको पता है कि आज हर कोई मेट गाला के बारे में बात कर रहा है, इसके कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रहा है। इस बार का जो गाला थीम है वो कॉस्ट्यूम आर्ट है कि आर्ट जो है वो आपके कपड़े में जो है वो दिखना चाहिए। यू नो मेरे को नहीं समझ लगता ये सारी चीजें, ठीक है, बट एक चीज जो है वो हम सब ऑफिस में एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के जो कॉस्ट्यूम्स थे वो देख रहे थे, लेकिन कुछ कुछ कॉस्ट्यूम मेट गाला के ऐसे डरावने थे कि बंदा देख के जो है वो डर जाए। सो डिफरेंट, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई, अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अपन लोगों को देखो, जब हम हर रोज ऑफिस के लिए तैयार होते हैं या किसी पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो हम 10 बार जो है वो अपने आप को देखते हैं कि यार ये चीज सही जा रही है कि नहीं जा रही, ये चीज अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रही, लेकिन मेट गाला के सारे आउटफिट्स को देख के मुझे सिर्फ अनकंफर्टेबल ही फील आ रही है, लेकिन ये उसमें किस तरह से कंफर्टेबल है वो मेरे को नहीं पता। बट एक चीज है, अब जो जो मेट गाला पे जा रहे हैं वो सही है, उनका सही है ना, बट जो जो मेट गाला पे नहीं गए हैं उन्होंने अपनी ही फेक मेट गाला जो कॉस्ट्यूम्स और पूरी लुक जो है वो तैयार करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। भाई साहब एआई से सारे काम लिए जा रहे हैं। जो है ओरिजिनल है यार।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

रिकॉर्ड। एक नंबर गाना अभी आप सुने, 6:33 दो सेकंड स्टूडियो की घड़ी पहुंच चुके हैं। बोलो ना क्या किया मेरे बगैर।

जेन जी डेटिंग टर्म में एक टर्म आती है ज़ॉम्बिंग। देखो ज़ॉम्बिंग का मतलब ये है कि जब कोई इंसान आपको सडनली गोस्ट कर देता है, गोस्टेड हमको पता ना बिना रीजन दिए वो गायब हो जाता है हमारी जिंदगी में। सो कोई इंसान अगर आपको गोस्ट कर देता है सडनली वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाता है एक्टिंग एज इफ नथिंग हैपेंड, तो उसको बोलते हैं ज़ॉम्बिंग। तो आपकी लाइफ में है जो कि ज़ॉम्बिंग करता है आपको। ये था आज का जेन ज़ी डिकोडेड। सिमरन गौरी आपके साथ ही ओपन दास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
2: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 riyals growth पर पाइए एक coupon.
2: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
1: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon or mega draw ticket.
3: It's back. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT and everything else. Starting from May 4th, don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
4: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening. Make you drive golden with
8: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
9: Supported by Homes R Us. We complete your home.

0: है ना, सोशल मीडिया जो है ना, वो सारे गानों को जो है वो ऐसे हिट कर देता है, जो गाने जो है वो लग रहा है कि चल नहीं सकते हैं। और अभी तो इतने पुराने पुराने गाने जो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रखे हैं। जब ऐसे म्यूजिक की कदर होती है ना, बड़ा सही लगता है यार। सिमरन कौर आपके साथ है, मेगा जी सुनियो के दादे की हाल चाल। थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसकी वजह से इस गाने को वापस से जो है वो बूस्ट मिला है। अभी फिलहाल मैच का क्या हाल है मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली और चेन्नई का मैच है, दिल्ली ने अपनी पारी खेल ली है। 20 ओवर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्कोर जो है वो टारगेट दिया है चेन्नई के लिए 156। सो या थोड़ी देर में मैच जो है वो शुरू हो जाएगा, अपडेट उसकी मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। लेकिन आप अपनी अपडेट भी बता सकते हैं कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं 3311063 पर।
1: Score update. Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadde ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Vakra VFS Global K site. Oak Banafi Metro K just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: मेगा जी सुने हो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। इस तरह का फन मस्ती जो है वो आप करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं और बाहर निकल के जो फन जो है वो यहाँ पर आपको जरूर मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड जो कि एक थीम पार्क है, उसमें 900 पार्क में जो है वो बना हुआ है, जहां पर आपको राइड्स जो है वो भी मिल रही हैं, लाइव शोज हैं जो कि आपको एंटरटेन करेंगे, मैस्कॉट्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए, फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, एकदम फूड कियोस्क एंड ऑल सारी चीजें जो है वो वहां पर है। मतलब अगर आपको राइड्स लेते लेते फन करते करते भूख लगी तो वो वहां पे भी पूरा सीन है और एकदम बढ़िया है माहौल, बढ़िया माहौल 9th of May तक ही रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप उसकी टिकट जो है स्नूनू SCT पे जाके बुक कर लीजिएगा। वीकडेज की टाइमिंग 4 PM to 10 PM, वीकेंड की टाइमिंग 4 PM to 11 PM तक है। बट अगर आप फ्री में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, फ्री में एंट्री चाहते हैं, तो इसकी टिकट्स हम दे रहे हैं आपको रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके यू नेवर नो कि आप जीत जाए।
1: बाजीगर तू है बड़ा जादूगर।
0: व्हाट अबाउट लैला? सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास, लो चाहे उल्फत बेबी, अलग लेवल की किक देता है ये गाना भी। सिमरन कौर आपके साथ, मैं क्या जी जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Hi, I'm Sarika.
2: Sarika. Radio.
3: मुझे
4: सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो ऑलिव
5: नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट शुगर
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट.

अविनाश तिवारी जो है इस लैला मजनू में फिल्म में इतने ज्यादा ये उनके गाने फिल्म पॉपुलर हो गई है कि वो किसी भी फिल्म की प्रमोशन के लिए जाते हैं अपने ही इस गाने पे नाच के आ जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि रूल होता है ना कि जब भी आप किसी फिल्म की प्रमोशन कर रहे होते हो फिर दूसरी फिल्म के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि लैला मजनू लैला मजनू लैला मजनू हर कोई उनकी फिल्म के बारे में बात कर

0: राजा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या है व्हाट द वायरल में, और ये चीज मैं बहुत देर से फील करती हूँ तो मैंने सोचा आज बताई दूं।
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल, क्या बात है, आरजे सिमरन के साथ
0: सोशल मीडिया पे रील्स में जब भी इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो रेडी हो रहे होते हैं गेट रेडी विद मी। अब हमें अब ये काफी ज्यादा ट्रेंड जो है चला, उस पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को इतने बड़े बड़े इवेंट्स के इनवाइट मिलते हैं, राइट। और रिसेंटली चलो फॉर एग्जाम्पल मैं किसका देख रही थी, कोचेला का जो था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो थे उन्होंने अपने अपने सब लोग अपने अपने ड्रेसेस जो हमें दिखाते हैं कि डे वन डे टू डे थ्री, बट हर एक ऑलमोस्ट हर एक इन्फ्लुएंसर जो था गेट रेडी विद मी में ये बोल रहा था कि ओ माई गॉड कि मेरे को जाना है, आई एम गेटिंग लेट, बट मेरे को ये नहीं पता कि मैंने पहनना क्या है। लाइक सीरियसली, तुम्हारे पास इतने बड़े इवेंट का इनवाइट है, आई एम श्योर आपको बहुत पहले पता लग गया होगा कि 10 मिनट में क्या आपके मतलब अलमारी में इतने ज्यादा कपड़े हैं, मतलब इतने, क्योंकि इतने बड़े इवेंट पे आप बहुत बड़े डिजाइनर कपड़े जो है वो पहन के जाते हैं, और ये काफी ज्यादा दिमाग लगा के जो है वो कपड़े पहने जाते हैं, जो कि मैंने देखा है जितने भी इन्फ्लुएंसर है, और उसके बावजूद भी ये बोलेंगे कि हमारे पास मुझे नहीं पता है कि मेरे को क्या पहनना है, और 10 मिनट बचे हुए हैं, और उसके बाद जब इनका कॉस्ट्यूम देखते ओ माई गॉड, लाइक देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए तो प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगा होगा, सारी चीजों को सोचने के लिए, लेकिन फिर भी सारे के सारे इन्फ्लुएंसर यही बात करते हैं, मेरे को पता नहीं है, आई हैव नथिंग टू वेयर, सीरियसली।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट योर

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: जॉय आलूकास, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: Radio Honor, your happiness frequency.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Manwani Kapoor, Radio Olive, you're with us.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm number one.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.

क्या प्यारा गाना है यार, जावेद बशीर की आवाज. दिल्ली ने पहले खेल दिया 156 रन का टारगेट जो है वो दिया है. चेन्नई अभी खेल रही है 16.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 144. दो विकेट जो है वो जा चुके हैं तो 22 बॉलों पे 12 रन जो है वो चेन्नई को जीतने के लिए चाहिए. आज का मैच जो है वो दिल्ली में हो रहा है और आज के दिन क्या मैच हारेंगे क्या नहीं है अभी कुछ भी पता मुझे. 8:24:12 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं. आने वाले गाने कौन से हैं? आजकल ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर.

0: आपने ओवर एक्टिंग की थी इस फिल्म में, तोते ने भी की थी इस फिल्म में मिलके. तो जबरदस्त तालियां जो है तोते की परफॉर्मेंस के लिए होना चाहिए. भाई साहब अलग लेवल की फिल्म थी यार ये.
1: तेरे बिना मर जाना तू ही सांसों का सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा है.
0: सुनते रहिए रेडियो वाले को कहते रहिए जियो बिंदास.
2: T20 स्कोर अपडेट presented by
3: Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Bakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
4: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
5: Cool song.
3: Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the hour.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर होम
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: ये गाना सुनते सुनते अपना नाम टाइप कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी देर में नेम गेम खेलने वाले हैं. तो आपका नाम मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि मेहनत करते हो यार आप. मुझे सुनते हो और आप लोगों से बहुत सारा प्यार है. 3, 2, 1 एंड गो.

जी मैं कहती सुनियो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन गौरी आपके साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। आने वाले गानों में से वो है मजेदार ये वाला गाना तो चलो आप एक काम करो आप अपना नाम लिख के मुझे भेजो 94 टाइम्स किसी ने अपना नाम लिखा है यार मतलब इंतजार तो कर लिया करो गाने के बीच में थोड़ी आपका नाम बोल दूंगी दोस्त क्या बात कर रहे हो यार 3311063 है मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063 पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है। चलिए अब मैं क्विकली नाम पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। नसीम जी थैंक यू सो मच, शाबाज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अमृगेश जी, अयांश जी, निधि जी, अबीर जी, शहजाद जी, शाहिद जी, सईद जी, रमेश जी, इब्राहिम, शुम सुलेमान थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। यार सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही नाम लिखा करो, 10 नाम मत लिखा करो, अगर 10 नाम बुलवाने हैं तो एक के बाद एक नाम जो है वो लिखा करो। शांतनु जी थैंक यू सो मच, बसंत जी थैंक यू सो मच, राणा जी थैंक यू सो मच, साइदुल जी थैंक यू सो मच, फतेह जी थैंक यू सो मच, रमनप्रीत जी थैंक यू सो मच, आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, नारायण जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, तीरथ प्रसाद जी थैंक यू सो मच, निश्चल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, असनाथ जी थैंक यू सो मच, फुरकान अली जी थैंक यू सो मच, सुमन उदीन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जमील जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रमेश जी ऑलरेडी नाम ले चुकी हूँ, जावेद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, डेजी जी थैंक यू सो मच हमको सुनने के लिए, कनाडा से एप्लीकेशन के थ्रू सुनती है आपके लिए तो बहुत सारा प्यार है यार, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, आबिद जी थैंक यू सो मच, हाफिज जी थैंक यू सो मच, चिंतामणि जी थैंक यू सो मच, अदील जी थैंक यू सो मच, महमूद जी थैंक यू सो मच, गुरांश जी थैंक यू सो मच, महमूद जी थैंक यू सो मच, सुदीप जी थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए अब आप दोस्त थैंक यू लिखो, अपने फेवरेट वाले इमोजी को जरूर भेजना। 2, 1, and go.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
0: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

कल सिमरन कौर आपके साथ। तो दिल्ली और चेन्नई का मैच था और चेन्नई ने आज का मैच जो है 8 विकेट से जीत लिया। ऑल राइट, सो मैच खत्म हो गया, शो भी ऑलमोस्ट खत्म।

प्यार कल मिलेगा आपको, अगले दो घंटे का प्यार जो है वो आपको मिलने वाला है मिडनाइट लाउंज में। सो कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। ओवरथिंकिंग मत करिएगा एंड खाना वाना टाइम पे खा लीजिएगा, कोई बढ़िया सी सीरीज देखते देखते टाइम से सो जाइएगा, खाने पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

हम सब ना लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि अब हम सबको ना कोई फर्क नहीं पड़ता। 2+2 7 होता है, 2+2 50 होता है, बहस करनी नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। 106.3 रेडियो ऑलर्स है आपके दिल की आवाज। मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। तो टेंशन क्यों पाल ली यार, जो जो कह रहे हैं ना बस ओके कर दो। सच बता रहा हूँ, ऑफिस में हो, जहाँ हो, जो ज्ञान दे रहा हो, ज्ञान पेल रहा हो ना, बस कह दो अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही। देखो मानना ना मानना है तुम्हारे ऊपर है। बचपन से एक चीज सिखाई गई, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, बस देखना सब कुछ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। जितना लोगों को कम समझाओगे, जितना माथा पर्ची कम करोगे ना, उतनी चिलपिल लाइफ रहेगी, है ना। तो बस चिलपिल लाइफ को और ब्यूटीफुल शूटिफुल बनाने के लिए जी आपके दिल की आवाज, मैं आरजे आकाश आ गया हूँ आपके साथ मिड नाइट लाउंज में ढेर सारे एक्साइटिंग चीजों के साथ, जहां पर हम कुछ ट्रिविया से लेकर आपके दिल का हाल उस ट्रिविया में जाएंगे जो आज दिन भर आपने किया, क्या किया, क्यों किया, इतना तो नहीं जानेंगे लेकिन इतना जरूर जानेंगे कि अब क्या करना है, है ना। और अब तो बस एक ही सॉल्यूशन है जो करना है, वो है बिंदास जीना है। क्योंकि यार देखो, तुम बिंदास तो मैं बिंदास, इसलिए गाना भी मैंने बिल्कुल बिंदास निकाला है जो इस शाम में चार चांद लगा देगा। तो चलिए इस इवनिंग को चार चांद लगाते हैं, स्वीट सी इवनिंग बनाते हैं मिडनाइट लाउंज में। जियो बिंदास।

0: भाई स्क्रीन के आगे दिल का क्या हाल, रील छोटी पर इफेक्ट हो बेमिसाल, खुशी हो या गम सब कुछ समझ जाए, टिकटॉक का अल्गोरिथम मूड पे कैसे छा जाए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है
1: रील वाली रियल कहानी।
2: रील वाली रियल कहानी।
0: जी हाँ, 106.3 रेडियो वॉलेट से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में रील वाली रियल कहानी। आपको पता है जो रील्स आप दिन भर टिकटॉक पे देखते हैं, टिकटॉक का एल्गोरिदम जो होता है, वो एल्गोरिदम आपके मूड को सिर्फ 90 सेकंड्स में समझ लेता है। हाँ हाँ, बस एक दो रील स्क्रॉल करते ही और फिर वही टाइप का कंटेंट आपकी फीड में पुश होना शुरू हो जाता है। कल रात मुझे भी यही फील हुआ, थोड़ी सी थकान थी, थोड़ा सा स्ट्रेस था और स्क्रीन पे खुला बस सैड और इमोशनल रील का फ्लड। ऐसा लगा जैसे मेरे फोन मेरी फीलिंग्स रीड कर रहे हो। और मैंने सोचा कि क्या सच में हम अपने फोन के मूड के शिकार बन गए हैं? मतलब क्योंकि देखो ना यार, वो आगे और इमोशनल करता जा रहा है और सेंटी करता जा रहा है, फिर हम स्टेटस पे भी लगा लेते हैं, मतलब फुल टू फ्लड आ जाता। नहीं तो इसलिए थोड़ी कॉशन जरूरी है जनाब, कभी कभी पॉज करो, रील का एल्गोरिदम भले ही आपको समझ जाए पर अपनी रियल फीलिंग्स पे कंट्रोल हमारे पास ही है। सो मूड कंट्रोल आपके हाथ में है, स्क्रोल का नहीं। नहीं तो इसलिए वो स्क्रॉल करना थोड़ा सा रोक दो बीच में और अपने मूड को चेंज करो, कुछ पॉजिटिव सुनो, रील हो या रियल इमोशन, बस आपकी फील एक ही रहनी चाहिए, बिंदास, है ना? जियो बिंदास।

यार अब कौन हीरो हीरोइन है ये तो पता नहीं, लेकिन तब जब हमारे पहले पहले क्रश आने स्टार्ट हुए थे, पहली पहली बार स्क्रीन पे दिल आना स्टार्ट हुआ था, तो किसी की एक्टिंग पे तो किसी के अंदाज पे, है ना। तो क्योंकि वो था फिल्मी फ्लैशबैक।

106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। और फिल्मी फ्लैशबैक में आज एक सवाल लेकर आया हूँ, एक ऐसा ट्रिविया लेकर आया हूँ जो आपको बताना है मुझे। यूजुअली हर कोई मानता है कि अब के टाइम पे जो हीरोज हैं दे आर द सुपरस्टार्स, बट लेकिन पहला सुपरस्टार वही होता है जिसने पहली बार स्क्रीन पे अपना जादू चगाया हो, जिसने सुपरस्टार का मीनिंग बताया हो। तो बताइए आप मुझे, वो पहला शख्स कौन था या पहला सुपरस्टार कौन था इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जिन्होंने लोगों का दिल जीता था। देखो एक्टिंग सबने करी और आज भी एक्टिंग हजारों लाखों करोड़ों कर रहे हैं, लेकिन एक होता है वो जो सबके दिल का सरताज, एक राजा बन जाता है। तो आप जल्दी से बताइए कौन था बॉलीवुड का वो पहला सुपरस्टार। शायद आपकी दादी मम्मी किसी ने तो बताया होगा, नहीं तो आज ही फटाफट अपनी दादी को कॉल लगा के पूछिए, दादू को कॉल लगा के पूछिए कि उनके टाइम का या फिर उनसे भी पहले कोई अगर था सुपरस्टार तो कौन था जो उनका फेवरेट था। क्या पता उस बहाने से आपको वोटिंग पोल मिल जाए। रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपना जवाब, जिसका जवाब सबसे पहले सबसे सही आएगा उसके लिए एक सुपर हिट सा बढ़िया सा गाना मैं चलाऊंगा। जियो बिंदास।

भाई स्क्रीन के पहले हीरो का था राज, साइलेंट फिल्म्स ने दिखाया एक अपना अलग ही अंदाज, फैंस की लंबी लाइन और तालियों का था शोर, आज भी याद है उनका गोल्डन चार्म और ग्लैमर का शोर। 106.3 रेडियो ओलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, और आप सुन रहे हैं

0: फ्लैशबैक।
1: जी हाँ, फिल्मी फ्लैशबैक में मैंने पूछा था कि सबसे पहला बॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार कौन था, तो मेरे पास सबसे सही आंसर आया है, सबसे सटीक और सबसे पहले जवाब आया है शाश्वत जी का, जिन्होंने बताया कि मास्टर विठाल थे साइलेंट फिल्म एरा के लेजेंड। यार ये बात तो सही है, 1910s में लेकर 1920s में उन्होंने फिल्म जैसे राजा हरिश्चंद्र और वीर अभिमन्यु में हीरो का रोल निभाया था। लोग सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाते, उनके लिए फैन फॉलोइंग इतनी थी कि उनको ऑफिशियली पहला मास हीरो माना गया था। उसके बाद 1930s में अशोक कुमार ने मॉडर्न हीरो का इमेज सेट किया और फिर देव आनंद, राज कपूर, दिलीप कुमार और पूरी बॉलीवुड की हीरो लाइनेज शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये याद दिलाता है कि सुपरस्टार बनने के लिए ना सिर्फ टैलेंट के साथ साथ लोगों का दिल जीतना, उनसे भी पूछना उनको क्या पसंद है, ये बहुत जरूरी है। मास्टर विठाल ने ये पहला रिकॉर्ड सेट किया और आज भी उनका नाम बॉलीवुड हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में आता है। तो हीरो छोटा या बड़ा, साइलेंट या लाउड, सिनेमा का चार्म हमेशा ऑडियंस, जो क्राउड होता है ना, उसकी हूटिंग से, उसकी क्लैपिंग से, उसकी तालियों के शोर से पता चलता है। नहीं, फिलहाल वन हूटिंग और वन क्लैप सेलिब्रेशन तो बनता है शाश्वत के लिए, जिनको इतनी नॉलेज है पहले की बॉलीवुड की। ये होते हैं असली बॉलीवुड लवर्स। तो ऐसे बॉलीवुड लवर के लिए एक बढ़िया सा गाना भी चलना चाहिए। तो यार शाश्वत, दिस सॉन्ग इज फॉर यू, जियो बिंदास।

अच्छा, बहुत से लोग हैं जो अपनी एक डायरी लिखते हैं, उसके अंदर अपने दिल की बात लिख देते हैं। ऑल्दो मुझे नहीं पता आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे हैं जो डायरी लिखना पसंद करते हैं। ऑल्दो मुझे बहुत पसंद है कि अपनी डायरी में अपने दिल की बात को लिखना, क्योंकि कभी कभार जब आप बहुत टाइम निकलने के बाद उस डायरी को वापस खोलते हैं ना, तो अचानक से आपके सामने वो पल याद आ जाते हैं जिस टाइम पे आपने स्ट्रगल किया, जिस टाइम पे आप उस चीज को लेकर इतना परेशान थे जो शायद परेशानी का विषय नहीं था। नहीं, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में दिल की डायरी लिए। दिल की डायरी में एक पन्ना आज मैंने ये भी खोला जहां पे मैं परेशान था ये सोचकर कि एक बार कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, मैं ही क्यों हमेशा करूं इतनी टेंशन लेकर। आज उस बात को हुए करीब 3 साल हो गए हैं, ना तो मन में गिल्ट है ना कोई और गिला, बस ये है कि यार क्यों उस समय इतनी टेंशन पाली। आज उस पन्ने को खोलने के बाद लगा कि आकाश उस समय तो क्यों नहीं समझा, लेकिन पता है उस पन्ने से मैंने, उस पेपर पे जो लिखे इतने अल्फाज थे ना, उनसे मैंने एक चीज सीखी कि लाइफ को मस्त जियो यार, उसको परेशानी के साथ मत काटो, क्योंकि ये पन्ने भरने चाहिए बहुत सारी हैपनिंग चीजों के साथ, और अगर इनमें गम है ना तो अगला पन्ना जरूर एक सक्सेस, एक खुशी के साथ पूरा करे, है ना। आरो वापस कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

अच्छा कभी कभार ना वीकेंड का इंतजार नहीं होता, बस अचानक से घर जाओ, रात को टीवी ऑन कर लो और उसके बाद वो पुरानी मूवी लगा लो जो आपका हमेशा से दिल जीतती आई है। 106.3 रेडियो ओलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में और आप सुन रहे हैं एक रात एक कहानी। और ये कहानी है डेनियल रेडक्लिफ की। जी हाँ, आप उनको जानते हैं हैरी पॉटर के नाम से। आपको पता है डेनियल सिर्फ 11 साल के थे जब उनको हैरी पॉटर बनाया गया। एक बच्चा और पूरी दुनिया का मैजिक स्क्रीन पे लेकर आ गया, क्या बात है। उनके ग्लासेस, एक्चुअल में वो ग्लासेस किसी विजन पर्पज से नहीं लगाए गए थे, वो उनका एक स्टाइल और करेक्टर को आइकॉनिक बनाने के लिए यूज हुए। डेनियल ने करीब 8 सीरीज की, जिसके लिए उन्होंने 15 ऑडिशंस दिए थे स्टार्टिंग में। सिर्फ 12 साल की एज से दुनिया भर का फेम फेस करना टीनेजर्स के लिए अनइमेजिनेबल प्रेशर था, क्या बात है। वैसे है ना, हैरी पॉटर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक कितना इमेजिनेशन है, वो उस जगह पहुंचना चाहते हैं। एज लाइक डोरेमोन, हाई डोरेमोन की दुनिया में जैसे हर कोई जाना चाहता है, इसी तरह से उसको मोर रियलिस्टिक वे में देखा जाए तो हैरी पॉटर की वो दुनिया नहीं। वैसे डेनियल का नाम और हैरी पॉटर का करेक्टर अब भी आइकॉनिक है। दुनिया भर के फैंस हर साल मूवी रीवॉच करते हैं और हॉगवर्ट्स विजिट करते हैं। क्या आप कभी हॉगवर्ट गए? अगर गए हैं तो मुझे बताइएगा जरूर। इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और क्या देखा आपने वहां पे खास, क्या आपको भी फील आया हैरी पॉटर वाला। फिलहाल मेरे को हैरी पॉटर से याद आया कि कल मेरी थोड़ी सी मूवी लास्ट की बच गई थी, मैं जरा वापस देखता हूँ। तब तक आपके लिए म्यूजिक का ब्रेक लेता हूँ छोटा सा, कहीं जाएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Midnight Lounge.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

अच्छा, आज के टाइम पे अगर रेशियो निकाला जाए ना, तो सोने से पहले आधे से ज्यादा लोग फोन देखकर सोते हैं, जबकि कहा जाता है कि एक घंटा पहले आपको फोन छोड़ देना चाहिए सोने से पहले, उससे आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी जाती है। 106.3 रेडियो ओलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। मिडनाइट लाउंज में बिफोर यू स्लीप क्या करना चाहिए? देखो, हम सब जानते हैं सोने से पहले हमेशा ऊपर वाले को याद करना चाहिए, शुक्र गुजार करना चाहिए कि इतना प्यारा दिन हमारा था, और अगर कल का दिन कुछ काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी तैयारी करके सोना चाहिए। देखो, सबको सब कुछ पता है, लेकिन करता कोई कोई ही है, कुछ कुछ नहीं, क्योंकि हम तो रात को रील स्क्रोल करते रह जाते हैं, कई बार तो सोने के टाइम पे जग रहे होते हैं और जगने के टाइम पे सो रहे होते हैं, है कि नहीं भाई? देखो, मैं बताता हूँ, रात की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, बिफोर यू स्लीप आपको एक बढ़िया सा गाना सुनना चाहिए, फोन को साइड देना चाहिए, उस गाने को गुनगुनाते हुए अपना बचा हुआ बाकी का पूरा काम और कल का डे शेड्यूल कर लेना चाहिए, और फिर देखो टाइम से सो जाना चाहिए। बस इसी तरह से मैं जा रहा हूं, यानी कि अभी कुछ देर में वापस आ रहा हूं एक बार और फिर करते हैं एक और बार गुड बाय वाला फील, और कैसे यहां से जाने के बाद भी कनेक्ट रहना ये भी बताऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अभी एक सरफराज जी ने गाने की फरमाइश की, पहले वो चलाते हैं, आप भी कहिए जी ओपन दास।

अच्छा सोच कर देखो, वो शख्स जिसे बनाया गया है उससे मोहब्बत करके तुम्हें इतनी खुशी होती है, तो सोचो जरा जिसने पूरी कायनात बनाई है जिस दिन उससे मोहब्बत हो गई तो क्या होगा। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। खुद से प्यार करो, खुद की सेल्फ केयर करो, यही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है उस ऊपर वाले की जिसने आपको बनाया है, नहीं? और हर एक उस इंसान की रिस्पेक्ट करो जो आपसे दिल से बात करता है, जो आपके साथ कोई फिल्टर्स नहीं रखता है ना। और बाकी जो खेल खेलते हैं ना उनको खेलाओ यार, खेल खेलाओ अच्छे वाले उनको जरा स्किप करो, स्किप बटन लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ऐसा को ना बस ऐसी गायब कर दो अपनी लाइफ से, मतलब उनको सुनना ही नहीं है, इग्नोर मारो फुल टू फुल, अगली बार से रिस्पेक्ट छोड़ो, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, ऐसे उससे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। खैर फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो गया है और जाते जाते बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी से, जो आपकी आने वाले सफर की मंजिल जो है ना वहाँ तक आपको बहुत खुशी खुशी पहुँचाएंगे, चाहे वो जिंदगी का हो या गाड़ी का सफर, तो बेशुमार प्यारा सा होना चाहिए। तो गानों को, अपकमिंग ट्रैक्स को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास, बाय बाय, गुड नाइट।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे, आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.